नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से यह आकाशवाणी जलंधर केंद्र का एफएम रेनबो चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1947 दे विशाख महीने दी 28 तारीख, तारीख तदनुसार ईस्वी सन 226 दे महीने दी मई महीने दी 18 तारीख है। इस वेले सवेरे 5:58 हो रहे हैं। साड़ी अज की सभा हुण शुरू हुंदी है। एफएम रेनबो अपने सारे स्रोतियों का निघा स्वागत करता है।

जी दोस्तों, म्यूजिकली यर्स प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग जलंधर। फिर साढ़े सारे दोस्तों जो कि सुन रहे हैं जी, जी आया नू दे गुड वाली मॉर्निंग।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

जी दोस्तों, तो सारे नहीं है ट्यूनिंग कितने 102.7 FM रेनबो ने नाल नाल 103.6 MHz भी ते प्रोग्राम चल रहा है। गुड मॉर्निंग जलंधर, थोड़ी आपनी आज दोस्त राहिल दे नाल। लो जी, फिर चक दो, क्योंकि जो ही तुसी कर रहे हो काम चंगी तरह करो। जे तुसी रेडी हो रहे हो, ओ हाँ रेडी हो, तो मैनूं याद आया क्योंकि अजकल जिहड़ी गर्मियां दा दिन जरा गर्म काफ़ी हो चुके ने दिन, है ना। तो कई बार आप करते हैं ना, जे अपने शूज़ पाते हैं या कपड़े जोड़े है आप हैंगर से टंग दें या फिर दीवार के नाल टंग दें, है ना। कई बार उन्होंने इदा ही पा लें, जो सवेरे सवेरे फटाफट कोट पाना होंगे क्योंकि रोज़मर्रा के कई कपड़े आप इदा ही है कि पा लें, है ना। उन्होंने झटकते नहीं हाँ। कई बार की होंगे कि जी मकड़ी या फिर कोई जोड़ा कीड़ा होंगे जोड़ा कि बहुत ज़्यादा जहरीला होंगे, वो सू कट ल। इस करके अपनी जो शूज़ है उन्होंने भी चैक करके बिल्कुल पाना चाहिए। इदा नहीं है कि बस सवेरे देखा तो लो जी पैर पाओ तो चल मेरे भाई, ना जी ना। एक बार प्लीज़ जरा चैक कर लेना चाहिए है। जे कपड़े खूंडी टंगे हुए हैं उन्होंने भी गल कर रही हैं, नाल दे नाल ही अलमीरा दे भी कई बार कपड़े जड़े ना झटक के ही पाने चाहिए क्योंकि

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विश

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

वैरायटी ज्यादा होएगी। सो प्रोग्राम गीत बहार ते गल्लां तो बाद आ गई है गीत दी वारी ते अली ब्रदर्स दी आवाज़ दे विच मैं प्ले करन जा रही हाँ तुहाडे लई प्यारा जिहा गीत मुहब्बत।

0: मैं एकदम वो हो गई कि हुण मैनू बोलना पैणा, मैं तो थोनू सुन रही सी, है ना, कि ए खत्म हो गया
1: क्योंकि
0: डायलॉग,
1: हाँ
0: मतलब
1: जी
0: तो तुहाडे
1: वही
0: वैन दे विच
1: डायलॉग,
0: वह रहे सी असीं।
1: हाँ जी बिल्कुल, डायरेक्ट डायलॉग बस इन्ना सीगा। और डायलॉग्स तो बहुत ने उन्हां दी आवाज विच, बहुत ने डायलॉग्स, बट उहदे विच इक होर एक डायलॉग सीगा मैं तुहानूं सुणाना, प्रतिज्ञा मूवी दा डायलॉग है।
0: जी
1: और अजीज अजीज साहब कहिंदे ने, ओह धर्मिंदर साहब उपर एक पत्थर दे उपर खड़े होए हुए हुंदे ने और अजीज साहब नीचे हुंदे ने, ओह फिर सोचदे आ वी, क्योंकि उहनां दे डबल रोल सी ना धर्मिंदर जी दा फिल्म
0: जी
1: विच,
0: जी
1: ते उहनां नूं पहले उहनां दे पिता जी नूं खलास कीता जांदा, मार दिता जांदा, ते फिर उहनां दे बेटे अपने अपने डैडी दी मौत दा बदला लैंदे ने। ओह किस तरह बोलदे ने जदों अजीज साहब कुछ सोचदे ने, मैंने कहीं तुम्हें देखा है, वो फिर धर्मिंदर साहब की बोल रहे हैं, हाँ भरत उसी खून का आखिरी कतरा हूं मैं जिसे तुमने जिंदा छोड़ दिया था, मैं कसम आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसी
0: क्या
1: का डायलॉग
0: बात
1: बना
0: है,
1: था।
0: क्या बात है, मतलब अज तक तुसी सब नु ना वो पुराने समय दे विच लै गए हो।
1: जी
0: सच
1: बिल्कुल
0: विच
1: बिल्कुल,
0: ही,
1: बहुत
0: सच्ची
1: शुक्रिया
0: मुच्ची
1: जी
0: ऐदा
1: तुहाडा,
0: लग रहा कि जिवें असीं वाकई धर्मिंदर जी नु, है ना, सुन रहे हैं अपने कन्नां दे नाल।
1: बहुत मेहरबानी, बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: खूब,
1: इन्ना
0: बहुत
1: एप्रिशिएट
0: खूब,
1: करने वास्ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच सर कॉल करन दे लई। ते मैनूं गीत दसो तुसी केड़ा सुनना।
1: हाँ जी निवेता जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, हर बार की तरह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश कर दियो, और तुसी गाना प्ले कर दियो उदास मन साहब जी आवाज विच, पहला सेहत जरूरी है।
0: क्या बात है जी, जरूर, सेहत वाकई ही सब तो पहला जरूरी है, ते जरूर प्ले करांगे ये गीत। थैंक यू सो मच कॉल करन दे लई। सो गीत असी जरूर प्ले करांगे, पर उस तो पहला एक छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी पंजाबी तड़का दे वेच पहुंचे ने अगले कॉलर स्पेशल वाला तड़का लगाने दे ली गल कर देना दे नाल। हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: नमस्कार कौन बोल
1: पंजाबी
0: रहे ने?
1: तड़का में, पंजाबी तड़का में मैडम जी आपका स्वागत है। शीश बिरयानी दिलकुशा मां की जलंधर
0: थैंक यू सो मच जी
1: अपने
0: ते
1: दोस्तों
0: बहुत
1: के
0: बहुत
1: दिल के
0: स्वागत है
1: अंदर।
0: जी प्रोग्राम दे विच।
1: शुक्रिया मैडम जी, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। जय माता दी कहने जी।
0: जय माता दी। ते
1: हाँ
0: फिर अजकल गर्मी गुर्मी बहुत हो गई है ते फिर
1: मैडम,
0: ठंडा ठंडा चल रहा है।
1: आदर तो ठंड लग रही जी।
0: तन ठंड लग रही है क्यों? तुसी कितने होर बैठे हो?
1: मैं हिमाचल च।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, तुसी हिमाचल पहुंचे हुए हो? हाँ
1: हाँ जी हाँ जी
0: पंजाब दे लोग हिमाचल पहुंच के सानू फोन कर रहे हैं।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: ठीक है जी, हिमाचल च मौसम किदा?
1: बहुत वधिया जी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
0: ठीक है ठीक है,
1: हाँ जी,
0: चलो
1: कल मैच देखण आए जी ते फिर इत्थे रोके जी।
0: अच्छा ठीक
1: हाँ जी
0: है,
1: हाँ,
0: चलो बहुत वधिया। ते
1: बस आन
0: फिर
1: लगे वापस फिर तुहाड़ा तुहाड़ी आवाज सुनी ते मैं कहा चलो अज पहाड़ी इलाके च वी ला के देखिए जी। लग गया फोन उतों,
0: क्या बात है,
1: बहुत खुशी
0: तुसी है
1: हुई।
0: ना सानू जड़े सुन रहे ने ते मैनू भी नाल, तुसी सारे नु हिमाचल लै गए हो, असी इमेजिन कर लिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी। बाकी मैडम गर्मी सर्दी कहते कदी हाँ है कदी ना है, कदी धुप है कदी छाए, ये तो
0: जी
1: संसार है
0: बिल्कुल
1: जी, चल
0: बिल्कुल,
1: रहा ही
0: ये
1: रहना
0: तो
1: है।
0: ऐदा ही चलते रहना है।

0: नहीं करनी चाहिए जी।
1: हाँ, नहीं नहीं
0: कहते हर मुश्किल का सामना करो, हंस के करो, खुश
1: जी
0: होके करो।
1: बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल नहीं चिंता कर रहे, बस थोड़ी जी एहतियात वरतनी होंगी कि गर्मी आ गई है
0: हाँ
1: ते हुण
0: जी,
1: पानी पुणी का ध्यान रखो, पींदे रहो, अपने आप नु हाइड्रेट रखो, है ना।
0: पानी मैडम पानी बचाना भी चाहिए था।
1: हाँ,
0: मैं
1: बचावांगे तो ताई
0: हफ्ते,
1: पीवांगे।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हफ्ते एक बारी ना लो, पानी दी बचत करो।
1: नहीं तो सिर्फ गर्मियां दे विच इदां दा टिप ना दिओ कि एक दिन ना लो, ये गलत हो जाना।
0: अच्छा जी चलो, रोज ला लो कोई नहीं पानी, मतलब मत एकदम फिर बाल्टी भर लो तुम, कह रही भी टूटी
1: हाँ
0: टूटी गोली छाड़ दो,
1: जी बिल्कुल
0: एक पास
1: बिल्कुल।
0: चलता, एक बाल्टी भर लो उदो ही ना लो, गड्डी धोने आ तो उदो तुसी एक छोटी
1: जी
0: जी बाल्टी
1: जी
0: भर लो, उदो गड्डी धो लो, गड्डी
1: पानी दी
0: थोड़ी मुश्किल
1: बचत
0: आती
1: करनी
0: थी।
1: बहुत जरूरी है, जे
0: हाँ
1: पानी
0: बाकी मैडम जो
1: बचावांगे ते
0: रोड
1: वरत
0: पे ना,
1: सकांगे।
0: अजकल रोड एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं,
1: हाँ बिल्कुल, रोड एक्सीडेंट
0: एदा थोड़ा जा सानू जरूर ख्याल रखना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: रोड के उपर अभी जो भी चलते हैं पहले तो कितने तुम जाना है, जिदा मैडम तुम वक्त तो पहला पहुंच जाते हो ना रेडियो
1: जी
0: अपनी ड्यूटी से, कभी तुम क्या मैडम रस्ते ट्रैफिक महकमा मैडम जी हैलो तुम कहो ट्रैफिक बहुत है मैं तो रस्ते जा,
1: हाँ बिल्कुल
0: मैं लगता है
1: बिल्कुल।
0: कि मैं 60-70 साल हो गए सुनने, मैं आज तक कभी नहीं सुनया कि मैडम ने कहा भाई मैं रस्ते बड़ी ट्रैफिक है जी, मैं नहीं नहीं आ रही, आ रही है जी
1: जी
0: इंतजार करो,
1: जी
0: कभी
1: जी
0: होया नहीं
1: जी
0: ना मैडम आज
1: नहीं
0: तक इतना।
1: नहीं नहीं है, हो भी नहीं सकता
0: हाँ तो बिल्कुल मैं यही कहना
1: है
0: चाहूंगा, तुम जो भी करो चलते हो अद्धा घंटा पहले
1: ना।
0: निकलो जो तुम
1: हाँ
0: दूर जा रहे
1: बिल्कुल,
0: हो
1: हाँ अपना
0: ताकि
1: मार्जिन
0: रस्ते,
1: लेके
0: हाँ
1: चलो,
0: जी
1: है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: तुसी
0: ताकि रस्ते
1: टाइम ते निकलते
0: निकलना है।
1: हो ते मुसीबत कईयां होरां नूं पै जांदी है, जदों
0: हाँ बिल्कुल
1: अन्नेवा
0: दूसरे
1: असीं
0: बंदे
1: गड्डी
0: नूं मुसीबत
1: चलाने
0: पै
1: हाँ
0: जांदी जी,
1: ते कईयां होरां नूं असीं मुसीबत दे विच पा दिन्ने हाँ। अपने
0: क्योंकि
1: आप
0: मैडम
1: नूं तां
0: जदों
1: जोखम च
0: मोबाइल,
1: पाने ही
0: हाँ
1: हाँ।
0: बिल्कुल जदों
1: हाँ
0: मोबाइल तुहाडे रस्ते कोई फोन आ जाता है ते उदो तुसीं गड्डी अपनी सैड ते ला के भी सुन सकदे हां असीं,
1: जी बिल्कुल।
0: और जदों किसे मोड़ आंदा ते एकदम मोड़ना कट्टो पिछे
1: हाँ,
0: देखदे नहीं असीं,
1: जे
0: और
1: जान है
0: पहले
1: तां
0: अग्गे चलदे।
1: जहान है,
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: छोटियां
0: बिल्कुल,
1: छोटियां एन गैलियां असीं करदे हाँ, जदों घरों बाहर निकल आने हाँ ते अपनी जायदाद समझ के जिदा मर्जी असीं चलाने हाँ
0: हाँ
1: दौड़ाने हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: ते,
0: और
1: है ना।
0: रस्ते चलते मैडम रस्ते को चीज खाने आते हम सड़क ते ना सुटो जी, ये भी ख्याल रखना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: गड्डी जैसी कई चिप्स वगैरह कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं
1: जी।
0: तो बोतल सड़क पे छोड़ देने, पीछे कोई आ रहा है तो भी मुश्किल हो जाती है।
1: हाँ, थोड़ी जी सोशल सेंस है ना सानू सारिया नू
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: रखनी चाहिए है, जेकर असी बाकियां तो एक्सपेक्ट करते हैं तो आप भी सानू करना पड़ेगा, जे आप
0: क्योंकि मैडम जी
1: करांगे
0: कहते
1: ते
0: हैं,
1: बाकी भी करेंगे जी।
0: हाँ क्योंकि कहते हैं जी आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
1: हाँ क्या बात है जी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, ते मैनू गीत
0: शुक्रिया मैडम
1: दसो
0: जी, गीत
1: केड़ा सुनोगे।
0: मैडम ला दो जी तुनका प्यार दा, राजविंदर
1: जी जरूर लगावांगे जी, तुनका
0: कपूर दा,
1: प्यार जी। थैंक यू सो मच कॉल करने के
0: शुक्रिया
1: लिए।
0: मैडम।
1: ते लो जी गीत प्ले कर रही हाँ, तुणका प्यार दा।

प्रोग्राम चल रहा है जी होम स्वीट होम। ते दोस्तों होम स्वीट होम दे विच शुरुआत करांगे अपने आप तो जी। अपने आप तो मतलब अपनी सेहत का ध्यान रखना है। जेकर असी अपनी सेहत का ध्यान रखांगे ते तां ही तां घर परिवार आले दुआले ते समाज का ध्यान रखा जाएगा ना। सो अपने आप तो शुरुआत करदे आं। अपने आप तो शुरुआत ते दिन की शुरुआत किदा करनी है दोस्तों। अजकल का मौसम गर्मी वाला है ते अक्सर ना मतलब निटाली जी आई रही आलस छाया रहा है बाहर जाने मन नहीं करता। तो ऐसे तो अजिहे समय के ना सूँ होंगे कि कोई एनर्जी वाली चीज़ मिल जाए एनर्जी ड्रिंक मिल जाए या कुछ ऐसा खाया जाए जिस दे नाल पूरा दिन एनर्जी बनी रहे। सो मैं थोनों उ चीज़ा दसन जा रही हाँ कि जिदे नाल तुसी किमें अपनी बॉडी नू हमेशा एनर्जेटिक ते एक्टिव रख सकते हो। सो दिन की शुरुआत किदा करनी है जी एक गिलास गर्म पानी नाल कोसे पानी दे नाल इहदे नाल शरीर एक्टिव रहेगा। तुसी भी सोचो कि गर्मी है ते कोसा पानी क्यों कह रहे हो जी पीन नू। यस दिन की शुरुआत कोसे पानी नाल करोगे बेशक गर्मी है तां थोड़ी जिहड़ी बॉडी है वह एक्टिव रहेगी। तो इस तों अलावा पानी पी लिया तो हुण सोक्ड बदाम किशमिश अखरोट इहदे नाल भी तुरंत ऊर्जा मिलती है। सो रात नूं पिगो के रखो बदाम किशमिश अखरोट मिक्स करके पिगो लो ते सवेरे इहनां नूं खाओगे तां दिन तुहाडा पूरी तरह एनर्जेटिक एक्टिव रहेगा। ते जे बनाना पसंद है तां फिर तां बहुत ही वधिया क्योंकि केला जेकर असीं सवेर दे समें खाने आ ते इह सानूं ताकत भी दिंदा है ते एनर्जी भी दिंदा है। सवेर दे टाइम ते केला खाना बहुत वधिया है। ते इस तों अलावा तुसीं दुध नाल ओट्स या दलिया खा लो ते उहदे नाल भी ज़्यादा लंबे समय तक ताकत बनी रहिंदी है। इस तों अलावा होर भी बहुत कुछ है जी लिस्ट बहुत लंबी है सारी लिस्ट मैं तुहानूं इक्को वारी तां नहीं दस सकती। चलो थोड़ियां जिहियां चीज़ां मैं हुण दस दिंदी हाँ ते थोड़ियां जिहियां असीं की तो बाद डिस्कस करांगे। स्प्राउट्स शरीर नूं प्रोटीन दिंदा ते ताजगी भी बनी रहिंदी है ते हैवीनैस भी फील नहीं हुंदी। गर्मियां दे विच जेकर असीं स्प्राउट्स दा नाश्ता करदे हाँ ते उह भी बहुत वधिया रहिंदा। सो दोस्तों इस दे नाल होर भी बहुत सारियां चीज़ां ने जिहड़ी मैं तुहानूं दसांगी गाने दे उस पार। सो एंजॉय करो एह गीत वापस आओ ते फिर एनर्जेटिक जड़े फूड हैगे एनर्जी गिविंग फूड हैगे है उन्हों का असी जिक्र करांगे।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार

0: क्यों है? कुछ नहीं पता।
1: इंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम होम स्वीट होम ते होम स्वीट होम ते विच दोस्तों अज असीं गर्मी नूं दूर पजाण दी गल्लां ही कर रहे हां क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी हुई है ते अगों अगों टैंपरेचर होर ज़्यादा वधना ही है सो गर्मी नूं दूर करन दे लई ही अज असीं गल्लबात करांगे क्योंकि हुण सब तों ज़्यादा सानूं टेंशन इसे चीज़ दी है कि किवें अपने आप नूं असीं ठंडा रखना है और किवें असीं तरोताज़ा रहना और किवें अपनी सेहत दा ध्यान रखना। सो दोस्तों गल ये है कि जिहड़े सीजनल फ्रूट होंदे आ जिवें कि तरबूज खरबूजा खीरा ककड़ी संतरा यह जरूर खाओ क्योंकि ये पानी वाले फ्रूट्स ने ते इहदे नाल तुहाडे अंदर कदी भी पानी की कमी नहीं रहिंदी जेकर तुसी ये फ्रूट्स खाते हो। और इस तो अलावा नींबू पानी लस्सी छाछ नारियल पानी शिकंजवी इन्हां नूं अपनी रूटीन दे विच जरूर जरूर जरूर शामिल करो जेकर तुसी गर्मी नूं दूर दूर तक रखना चाहते हो। और इस तो अलावा जेकर तुहानू प्यास ना भी लगे तो साधारण पानी है जड़ा वो पींदे रहना चाहिए। असीं वेट नहीं करनी कि जदों प्यास लगेगी उदों ही पानी पीना है, नहीं, उस तो अलावा भी सिप सिप करके सानू पानी पींदे रहना चाहिए। तो जेकर घरों बाहर निकलना तो कोई शर्म नहीं करनी कि हो मैं अपने आप को किवें कज के निकला किवें किदा लगेगा, तुसीं सिर ते टोपी या छतरी नाल लैके निकलो।

वाह जी वाह, मैं शायर तो नहीं मगर ए हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। सो दोस्तों, लिखन वाले ने आनंद बख्शी साहब ते संगीत दिता है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने ते शैलेंद्र सिंह जी की प्यारी जी आवाज़। तो दोस्तों, शैलेंद्र सिंह जी आवाज़ दे विच वो मासूमियत सी जिसने इस गीत नू अमर कर

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: तो स्वागत है जी प्रोग्राम मिडे मेलेडीज़ दे विच। दोस्तों तुसी जानते हो कि मिडे मेलेडीज़ दे विच अज असी गल कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह जी दी ते उना दी ही सुरीली आवाज़ दे विच गाए हुए गीत भी इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों शैलेंद्र सिंह जी दी आवाज़ विच जिथे एक पासे मस्ती सी उथे ही दूजे पासे एक बहुत ही संजीदा साफ सुथरा ते मासूम रोमांस भी सी। ते जदों फिल्म बनाई गई अखियों के झरोके से तां उस गीता ने हर एक दियां अखां भी नम कर दित्तियां ते दिलां नूं छुया भी। दोस्तों इस फिल्म विच हेमलता जी दे नाल शैलेंद्र सिंह जी दा एक बहुत ही मिठा गीत है जो गलबात दे अंदाज विच है ते आओ सुनदे हां बेहद खूबसूरत रचना कई दिन से मुझे।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकियां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जान

वो कह रहे थे कि इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। हाँ दोस्तों, जो दो ना असी कदी ना कदे थोड़ा मूड अच्छा होवे ना, वैसे तो हर वक्त मूड अच्छा रखो, पर कदी कदी ना चलो उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। कदी कदी मूड अच्छा होवे ना, तुसी ना पता की नोट करियो, तुसी रस्ते च जा रहे हो ते तुसी ना हर बंदे दी फेस देखना, तुसी देखे होंगे यार कि बहुत कई ना

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू। दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम दिला शायर है, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल दोस्तों प्रोग्राम चल रहे थे, साढ़े स्रोते भी सानू कि ना कुछ भेज रहे ने, एंड साढ़े प्यारे ने एक लिखा है कि किनिया सोहनिया तेरिया अखा, बस देखी जावा तेरिया अखा, सबर हलीमी सादगी झलके इन्हां चों जद भी वेखा तेरिया अखा, बंद अखा तो भी तू दिसदा, फिर भी तू इसदा जद खुल गया अखा, बिन बोले आपा गल कर लिए एक दूजे नाल मिला के अखा, आजा मिलके गल्ला कर दे।

वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी आया है। 200-200 रुपये प्रोग्राम दिला शायर है तो मैं थोड़ा अपना आरजे तो श्रमनीश। वो दोस्तों प्रोग्राम चल रहे दिला शायर ते 2:48 हो चुके ने दोस्तों ते ना है टाइम किदा निकल गया पता भी नहीं लग गया दोस्तों। वेल दोस्तों जिंदगी च ना एक आप गल करते हैं कि असी ना बहुत सारे इदारे मौके आते हैं कि अपना निराश जल्दी हो जाते हैं। निराश कहने का मतलब ना कई बार सानू सिखा मतलब शायद सानू सिखा दिता हों कि अगर सानू या आप किसी को देख लिया होंगे भावें साढ़े कोई भी बंदे हो असी ना हमेशा सोच लेंगे कि यार सानू कुछ नहीं मिले या साडा रह गया तो असी निराश हो जाइए। एवं साढ़े सियाने नहीं कह गए कि निराश नहीं होना यार, बिना नाराज तो अगे तो बदो एक बार लग यू पता है कि हाँ यार असी क्यों नाराज हो गए, अपना टाइम वेस्ट किया यार। इन्ना सोहनी इन्नी सोहनी जिंदगी है, इन्ना कुछ आ चुका है साड़ी जिंदगी च। देखो ना कहते ना पौड़ियां ना जड़ियां एक ही करके चढ़ोगे ना फिर ही उपर पहुंचते होंगे। सिर्फ एक पौड़ी चढ़ के आप अपने आप न कह नहीं सकते मैं अपनी मंजिल पूरी कर ली है दोस्तों। क्या बात है जी, प्यार का सबसे अच्छा सबूत विश्वास है। साडे सरोते ने भेजा कि प्यार का सबसे अच्छा सबूत ना विश्वास है। आए है क्या बात है जी, विश्वास ना बड़ा काम आता है। जिवें कि कहिंदे ने बच्चे की परवरिश संस्कार बड़े काम आते हैं तो प्यार च ना

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा। आज कार्यक्रम में हमारा विषय है प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस, यानी मौखिक और दंत समस्याओं से कैसे बचाव करें। और इस खास विषय पर हमारे साथ हैं डॉक्टर हरमीत सिंह, जो हैं डेंटल स्टाफ सर्जन डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: थैंक यू जी, थैंक यू।
1: श्रोताओं, ओरल हेल्थ हमारे पूर्ण स्वास्थ्य का आईना होती है। अगर मौखिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है, खासकर हमारे पाचन तंत्र पर। और इस विषय से जुड़े आपके पास भी हैं सवाल, तो आप हमें करिए कॉल, जिसके लिए हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1080 और 2342-1082। आप हमें व्हाट्सएप से मैसेजेस भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, अगर हम दांतों और मौखिक स्वच्छता की बात करें तो ये कितना ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए? दांत और मुंह में परेशानी आने के कारण क्या है, क्यों ये ख़राब होते हैं दांत?
2: देखिए, ओरल कैविटी जो मुख है, इसको पहले इट इज़ अ मिरर इमेज ऑफ जनरल हेल्थ ऑफ द बॉडी, मींस पूरे जनरल हेल्थ का स्टेटस जो है ओरल कैविटी से पता चल जाता है। ठीक है, अगर उसके जनरल कंडीशन, पेशेंट की जो डेंटल कंडीशन की पुअर है, कि उसमें दांतों में कैविटीज हो रही हैं, उसके मसूड़े खराब हैं, उसमें पायरिया लग रहा है, और यहाँ उसके मुंह के अंदर सफ़ेद निशान या कैंडिडाइस जिसको बोलते हैं वो हो जाता है, या उसके कोई इम्पैक्टेड टीथ हैं उसकी वजह से स्वेलिंग है, या पेशेंट कोई आर्टिफिशियल डेंचर्स पहनते हैं, तो उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सब हम आज इस प्रोग्राम में हम जानेंगे। इसके अलावा टीएमजे की प्रॉब्लम्स हैं, जो जॉ का जॉइंट होता है या बड़ा जो हिलता है जॉइंट, तो उससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल पब्लिक में, और उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मुंह में काफ़ी अल्सर्स हो जाते हैं कई बार, वो सिस्टेमिक डिसीजेज जो बॉडी की जनरल डिसीजेज हैं उससे रिलेटेड हैं, कई बार फीवर के साथ अल्सर्स आ जाते हैं और कैंसर तक का रूप ले लेते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस शो में।
1: जी, तो सुना श्रोताओं आपने, आज हम डिस्कस करेंगे दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की और मुंह में होने वाली परेशानियों की। देखिए, अगर आपके पास इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल है ना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे नंबर है 011-2342-1080 और 2342-1082। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, इस खास विषय पर बहुत सी जानकारी आपसे लेंगे, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कैविटी की। अगर बात कैविटी की करें तो कौन सी लापरवाही है जिसकी वजह से दांतों में कैविटी की समस्या हो जाती है?
1: देखो, डेंटल कैविटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा सभी दांतों में, ऑलमोस्ट जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं सब में कैविटीज़ होती हैं। और जो इसका प्रमुख कारण है वो है कि हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं करना। जैसे कि हम हमेशा पब्लिक में और पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि ब्रश जो है ट्वाइस डेली करना चाहिए, 2 मिनट के लिए करना चाहिए, और कौन सी टूथपेस्ट के साथ करना चाहिए ये भी बताते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट रिकमेंडेड है, जो कि एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री है, उसमें हम हमेशा रिकमेंड करते हैं फ्लोराइड होना चाहिए, बिकॉज फ्लोराइड है वो कैविटीज़ को प्रिवेंट करता है, कि कैविटी को रोकता है। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है वो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एनेमल। ओके, बट एनेमल में भी केरीज हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो फ्लोराइड है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट को फ्लोरो एपेटाइट में कन्वर्ट करता है, विच इज स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल हाइड्रोक्सी एपेटाइट। सो हमें हमेशा फ्लोराइड टूथपेस्ट ही यूज़ करना चाहिए। उसकी क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए, किस एज ग्रुप में, वो सब मैं आपको साथ साथ इस प्रोग्राम में बताते रहूँगा।
0: जी जी जी डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, ले लेते हैं उनका कॉल।
1: हाँ जी, जरूर।
0: हेलो।
2: हेलो
0: जी।
2: हाँ, सबसे पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आपको भी
1: नमस्कार।
2: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही अर्ज कर रहा हूँ।
0: जी।
2: तो मेरे 4 छोटे-छोटे सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि कई शख्स कहते हैं हमारे मुंह में 32 दांत हैं, कई कहते हैं 28 हैं, क्योंकि मेरे मुंह में स्वयं 28 दांत हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये मतलब मदर फादर की वजह से ही ऐसा होता है, या फिर हमारा कोई कुदरतन मतलब ऐसी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है। पहला सवाल मेरा ये
0: जी।
2: दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो अक्कल अक्कल दांत होती है, जो अक्कल दांत जिसे कहते हैं,
0: जी जी,
2: अगर अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसका हमें घरेलू स्तर पर क्या करना चाहिए उपाय। तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हम खाना खाने से पहले भी हाथ धोते हैं और खाना खाने के बाद भी हाथ धोते हैं, और ऐसा ही अगर हम जो है दांत साफ करते वक्त ऐसा करें तो कोई हर्ज तो नहीं। और चौथा और आखिरी सवाल वो ये है कि हम कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, किसी भी पेस्ट को इस्तेमाल कर ले, किसी भी ब्रश को, न जाने होता क्यों कि 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद मुझे तो सेमल आनी फिर शुरू हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले चिगम का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या करना है? ये मेरे 4 सवाल है, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
0: जी डॉक्टर साहब, इनके सवाल आपने सुन लिए।
1: 3-4 सवाल हैं इनके। तो सबसे पहला सवाल तो इनका ये था कि इनके 28 दांत हैं और इनके 32 क्यों नहीं हैं। तो इसका इसका रीज़न ये है कि पहले जो इंसान था, मतलब सेंचुरीज काफ़ी सालों से पहले, तो उस टाइम जो है रॉ फूड खाता था।

0: फ्रूट तोड़ा और वो खा लिया, पका के या सॉफ्ट फूड नहीं खाता, तो उस टाइम पे 32 दांतों की इंसान को ज़रूरत होती थी। तो जैसे जैसे इंसान की डेवलपमेंट हुई सॉफ्ट फूड पे आया, तो ऐसे ऐसे 32 जॉ का साइज जो है श्रिंक होता जा रहा है, तो उसकी वजह से जो 32 दांत होते थे जो लास्ट के मोलर हैं, विजडम टीथ जिसको कहा जाता है, वो अब या तो इरप्ट ही नहीं होते हैं, या इरप्ट होते हैं तो टेढ़ी मेढ़े डायरेक्शन में होते हैं, तो वो फिर फर्दर प्रॉब्लम करते हैं। तो इसलिए चिंता की बात नहीं, अगर आपके 28 दांत हैं तो वो भी नॉर्मल ही है, तो आपको कोई आर्टिफिशियल लगवाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ये है कि अगर इम्पैक्टेड टीथ हैं जो कि विजडम टीथ जिसे कहते हैं, अगर वो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं तो फिर आप उसका चेकअप कराइए आपके नियरेस्ट डेंटल सेंटर पे। अगर वो कोई पैथोलॉजी उसके साथ एसोसिएटेड है, या वो अगर टेढ़ा है और वो साथ वाले दांत को डैमेज कर रहा है, तो फिर उसका एक्सरे करा करके उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। या कई बार क्या होता है, जो इम्पैक्टेड टूथ है जो अभी निकला ही नहीं है, उसके ऊपर गम की कवरेज होती है, तो वो बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन करती रहती है, उसको सोर थ्रोट भी होता है, कई बार उनको फीवर भी हो जाता है रिकरेंट उसकी वजह से, तो आपका चेकअप होना चाहिए, एक्सरे होना चाहिए। अगर उसके साथ टूथ बार बार प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको सर्जिकली हम रिमूव करते हैं। अगर कोई टूथ में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके साथ कोई पैथोलॉजी एसोसिएटेड है, कई बार इम्पैक्टेड टीथ के साथ सिस्ट, रसोली या कोई ट्यूमर भी एसोसिएट हो जाता है, तो इसका रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए एवरी 3 ईयर और 5 ईयर। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक एक्सरे जरूर होना चाहिए, कहीं उसके साथ कोई पैथोलॉजी तो एसोसिएटेड नहीं है। तो इस तरह से हम इम्पैक्टेड टीथ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
1: जी जी, तो सुना श्रोताओं आपने कि जो दांत है हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपना जो हम स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना है वो इन्हीं से चबाते हैं और हमारे पेट तक जाता है, और इनकी खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीज़ की। इससे अगर आपको भी है कोई आपके मन में सवाल या जानना चाहते हैं कोई बात, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ना, जिसके लिए नंबर है 01123421080 और 2342108 2। व्हाट्सएप से मैसेजेस के लिए 9868107070 है हमारा नंबर। डॉक्टर हरमीत सिंह है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, हम कैविटी की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि कैविटी की समस्या क्यों होती है, इसका कैसे पता चले कि किसी को कि उसको कैविटी हो गई है, और इसका निदान क्या है?
0: देखिए, कैविटीज़ की जो नॉर्मली समझा जाता है कि कैविटीज़ जो है ब्लैक कलर की, जिसमें होल हो जाता है, कि वो कैविटीज़ हो गई हैं, ठीक है। बट ये स्टार्ट होता है एज अ डेंटल केरीज, जो कि एक वाइट स्पॉट लीजन की तरह स्टार्ट होता है। ये लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है इस चीज़ के बारे में कि वाइट स्पॉट लीजन्स जो होते हैं डेटर एक्चुअली डेंटल केरीज, जो इनिशियल स्टेज में है, जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं उसको कैविटीज़ में प्रोग्रेस होने में। तो वो बहुत अच्छी स्टेज है उसको प्रिवेंट करने की। हम उसको फ्लोराइड टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं, और उसको फ्लोराइड जेल टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए देते हैं, और फ्लोराइड वार्निश अप्लाई करते हैं क्लिनिक में, तो उससे जो है हम डेंटल कैविटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बार हमने सुना होगा और देखा होगा, अपने साथ भी होता है कि जब हमें दांत में दर्द होता है तो हमें लगता है कि इसकी क्या वजह है, कि कोई कैविटी हो गई है या ये जो दर्द है वो नॉर्मल है। तो कैसे पता करें कि ये दांत का जो दर्द है वो नॉर्मल है या कैविटी है उसमें?
0: नहीं, देखिए, उसके लिए आपको एक दंत चिकित्सक के पास, डेंटिस्ट के पास ही जाना होगा। वो क्लिनिकली चेक करेंगे कि दांत में कैविटी है या कोई उसके साथ गम्स की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या कई बार कुछ लोगों को न्यूरेल्जिया जैसी पेन होती है, करंट की तरह लगता है, तो उसमें दांत की कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी दांत में पेन होती है। कई बार टूथ जो है क्रैक हो जाता है, जो कि विजिबल नहीं होता क्लिनिकली और रेडियोग्राफिकली भी, एक्सरे में भी नहीं दिखता है, तो उसको जो है क्रैक टूथ सिंड्रोम जैसे कि हम कहते हैं, तो वो डेंटिस्ट के पास जाकर ही आप अपना डायग्नोसिस करा सकते हैं और ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हम आगे बात करेंगे। एक श्रोता जुड़ गए हमारे साथ कॉल लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
1: जी।
2: हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरी एज 48 है।
0: हाँ जी।
1: और आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम कुंवर सिंह है
1: जी।
2: तो मेरे ये टीथ में गैप आ रहे हैं, तो उसका क्या इलाज है? नीचे वाले दो जो फ्रंट के टीथ में ज्यादा गैप आ रहा है
1: जी,
2: तो उसका सोल्यूशन क्या है? इस एज में क्या किया जा सकता है, ये
0: देखिए, जैसे कि आपने एज अपना 48 बताया है, तो जनरली इस एज में गैप होना का कारण ये हो सकता है कि आपके टीथ जो हैं

0: वो वीक हो रहे हैं, मीन्स उसके गम्स जो हैं जो इसको होल्ड करके रख रहे हैं वो गम्स वीक हो गए हैं, तो हो सकता है कि उसमें बोन रिजॉर्प्शन हो गया हो, बोन जो है दांतों को छोड़ के नीचे चले जाने की वजह से टीथ का फ्लेयरिंग हो जाता है, तो गैप हो सकता है उसकी वजह, तो आपको एक डेंटल सर्जन से चेकअप कराना चाहिए, तो जो भी उसका कारण है उस कारण को दूर करके उसका सोल्यूशन किया जा सकता है।
1: जी, उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कैविटी की, अब हम बात करते हैं पायरिया की। ये किस तरह की बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं और बचाव कैसे करें इससे?
0: देखिए, पायरिया एक जनरल टर्म है जो कि साइंटिफिकली हम उसको जिंजिवाइटिस या पेरिडोनटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से होता है कि जब कोई पर्सन जो है ठीक से ब्रश नहीं करता है और उसका प्लाक जो है डिपॉजिट रह जाता है दांतों के ऊपर, तो उसकी वजह से जो प्लाक है वो इरिटेट करता है, बैक्टीरिया उसमें ग्रो करते हैं तो वो इरिटेट करते हैं गम्स को, मसूड़ों को, तो उसकी वजह से तो बॉडी का रिएक्शन होता है तो गम्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जैसे ही पेशेंट ब्रश करता करता है तो उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, और होता यह है कि पेशेंट ये समझता है कि ब्लीडिंग हो रहा है तो वो ब्रश करना छोड़ देता है, वो उंगली से क्लीन करना शुरू कर देता है, तो होना ऐसा नहीं चाहिए। अगर आपका प्लाक डिपॉजिट है मसूड़ों के आसपास तो ब्रश रेगुलर करते जाना रहना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए, और इसके अलावा अगर फिर भी अगर प्रॉपर केयर ना की जाए तो जिंजिवाइटिस फर्दर प्रोग्रेस हो जाती है पेरिडोनटाइटिस में। उसमें क्या होता है, गम्स के साथ साथ बोन भी जो है डाउन मूव करना का शुरू कर देते हैं, रिजॉर्प्शन होना शुरू कर जाते हैं, तो उससे जो है पॉकेट्स बन जाती हैं गम्स में, पेरिडोनटल पॉकेट्स जिनको हम कहते हैं, और साथ साथ टीथ की मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, तो इन सबको टुगेदर हम बोलते हैं पायरिया हो गया है। तो उसके लिए प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक करनी चाहिए और डेंटल फ्लॉस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम सबको बोलते हैं ब्रश एंड फ्लॉस योर If you want to keep your teeth clean. The teeth.
1: जी, श्रोता हूँ, आपको एक बार फिर बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल है ओरल डिजीजेज, यानी मौखिक और दंत समस्याओं से कैसे बचाव करें इस विषय पर। अगर इससे संबंधित आपके पास भी हैं कोई सवाल या चाहते हैं आप अपनी परेशानी का समाधान, तो आप हमें कॉल करिए ना, नंबर से 01123421080 और 23421082। व्हाट्सएप से मैसेज के लिए नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आपकी सेहत से जुड़े कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज है हमारे साथ डॉक्टर हरमीत सिंह, जो हमें बता रहे हैं प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस जैसे खास विषय पर बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल।
2: हाँ जी, जरूर।
1: हेलो हेलो हेलो
3: हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: जी जी जी।
3: हाँ जी, नमस्कार, मैं सपना बात कर रही हूँ।
1: जी
3: नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं, हम सबको इतना बेनिफिट मिलता है इससे।
1: जी धन्यवाद।
3: और दूसरा ये है कि मेरे दो पेशेंट्स हैं।
1: जी।
3: एक तो ये है कि मेरे पीछे वाले मोलार्स ऊपर और नीचे दोनों में ही कीड़ा लगा है।
1: जी।
3: काला काला
1: जी,
3: जो बहुत ही क्लियरली ऑब्वियसली विजिबल है सभी को, मगर फिर भी डेंटिस्ट ने मुझे बोला कि जब तक वो आपको ट्रबल ना करें तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो मुझे पूछा था कि क्या उसको ऐसे छोड़ना सेफ है, कहीं वो इधर उधर और तो नहीं हो जाएगा
1: जी
3: इन्फेक्शन। नंबर टू, मेरी आरसीटी, एक डेंटिस्ट ने बोला कि मुझे आरसीटी कराना चाहिए, एक और मोलार है मेरा।
1: ओके।
3: उसमें बहुत ज्यादा मुझे पेन था और वो थोड़ा थोड़ा सा हिलने भी लगा है। एक ने बोला कि आप उसको निकलवा लीजिए और दूसरे ने बोला आप आरसीटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आरसीटी करवा लिया है उसका, मगर अभी भी खाने में मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं है। ऑल्दो पहले के जितना पेन तो उसमें नहीं है, मगर फिर भी वो उतना कंफर्टेबल भी नहीं है खाने में।
1: जी
3: डॉक्टर साहब, पूछा था कि उसका मतलब क्या हमने ठीक किया उसमें आरसीटी कराकर।
1: जी
2: देखिए, आपका पहला सवाल था कि आपके दांतों में काला काला कीड़ा लग गया है पीछे वाले दांतों में। देखिए, काला काला कीड़ा जो है वो कैविटीज़ ही हैं कि नहीं है, वो या वो सिर्फ एक स्टेन्स ही हैं। जो ब्लैक दिखता है वो जरूरी नहीं कि कैविटीज़ ही हैं, अगर उसमें होल है तो उसको हम कैविटीज़ बोलते हैं। हो सकता है वो कुछ स्टेन्स हो, एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हो, जो आप ठीक से क्लीन नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से वो ब्लैक हो गए हैं। तो जरूरी नहीं कि वो कैविटीज़ ही हैं, तो आप एक चेकअप करा सकते हैं कि वो कैविटीज़ हैं कि नहीं है। तो और दूसरी चीज़ आपने बोला कि वो स्प्रेड ना हो जाए, कैविटीज़ जो हैं दूसरे दांतों में ना लगे। देखिए कि इन कैविटीज़ जो हैं, डेंटल कैविटीज़, वो इन्फेक्शियस नहीं होती कि एक दांत से दूसरे दांत को लग गई, या एक साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड में कैविटी लग गई, या एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में कैविटीज़ का इन्फेक्शन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डेंटल कैविटीज़ जो हैं प्लाक की वजह से होती है, जो प्लाक दांतों के आसपास डिपॉजिट हो जाता है, और जब आप मीठा साथ में खाते हैं तो जो बैक्टीरिया है प्लाक में वो शुगर को कन्वर्ट करते हैं एसिड में, और वो एसिड जो है

0: को डिसॉल्व करता है, एनामल को डिसॉल्व करता है, जिसके वजह से उसमें कैविटीज हो जाते हैं। तो मेन है आपको प्लाक को कंट्रोल करना है प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से और डेंटल फ्लॉस करके, तो इस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है डेंटल कैविटीज का। और दूसरा क्वेश्चन बताया कि आपका टूथ में पेन था, उसका रूट कैनाल हो गया है, तो आप जो है अपना चेकअप करवा करके RCT के बाद का एक्सरे करा करके देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके कैपिंग उसमें फुल कवरेज क्राउन उसके ऊपर लगवा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, कैविटी काफ़ी लोगों में एक कॉमन प्रॉब्लम है, और इसकी क्या वजह है और कैसे बचाव कर सकते हैं इससे?
0: देखिए डेंटल कैविटीज़ जो हैं काफ़ी टाइम से हैं लोगों में,

0: का एक्सरे करा करके देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके कैपिंग उसमें फुल कवरेज क्राउन उसके ऊपर लगवा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, कैविटी काफ़ी लोगों में एक कॉमन प्रॉब्लम है, और इसकी क्या वजह है और कैसे बचाव कर सकते हैं इससे?
0: देखिए, डेंटल कैविटीज़ जो हैं काफ़ी टाइम से हैं लोगों में, ठीक है। तो हमारे जो हैं दो मॉडल होते हैं डेंटिस्ट्री में, एक होता है ऑपरेटिव मॉडल, जो कि मॉडर्न डेंटिस्ट्री जो डॉक्टर जीवी ब्लैक ने सेंचुरीज एगो दिया था कि दिस इज़ ऑपरेटिव मॉडल, कि कैविटीज़ हैं उसमें कैविटीज़ को क्लीन किया और उसमें फिल कर दिया, मीन्स ड्रिल एंड फिल, जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री डेट इज़ बेस्ड ऑन था। तो कैविटीज़ तो कम नहीं होंगी, जो जिसको कैविटी हो गई है उसको हमने ड्रिल करके फिल कर दिया, तो हमने प्रिवेंशन के लिए तो कुछ किया नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रिवेंटिव मॉडल अपनाया, नॉन ऑपरेटिव केयर दिया उन्होंने पब्लिक में, तो उससे जो है कैविटीज होने से उन्होंने रोका का, तो उन वो डेवलप कंट्रीज ने काफ़ी हद तक कैविटीज को कंट्रोल कर लिया है। तो उन्होंने क्या क्या अपनाया तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि वो जो है ब्रश जो है आपको एक तो दिन में दो बार ही करना चाहिए, सुबह और रात को 2 मिनट तक करना चाहिए, और पेस्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए और कब से शुरू करना चाहिए ब्रश करना। जैसे जो बेबी है न्यू बॉर्न, उसका फर्स्ट टूथ अपीयर होता है 8 to 10 months ऑफ एज में, तो जैसे ही फर्स्ट टूथ अपीयर हो तो उसको जो है सॉफ्ट बेबी ब्रश से उसको क्लीन करना स्टार्ट करना चाहिए, बिना शक आप बिना टूथपेस्ट के कर सकते हैं, ठीक है। और उस बच्चे का फर्स्ट विजिट टू द डेंटिस्ट शुड बी एट हिज फर्स्ट बर्थडे, मीन 1 ईयर की अराउंड उसको फर्स्ट विजिट आना चाहिए। सेकंड, जो न्यू बॉर्न टू less than 18 years जो किड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उसमें जो ब्रश है बिना पेस्ट के आप कर सकते हैं, बट 18 months to 6 years तक के जो बच्चे हैं, 6 years तक के बच्चे, उनको जो है किड्स टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, जिसमें कि फ्लोराइड की मात्रा 500 ppm होना चाहिए, और जो 6 years से अबव हैं उनको 1000 ppm एडल्ट टूथपेस्ट फ्लोराइड वाला यूज़ कर सकते हैं। तो उससे जो है प्रिवेंशन होगा डेंटल कैविटीज़ का। और सेकंड, ब्रश करना कैसे है, ब्रश करने के अलग अलग टेक्निक होती हैं, जैसे कि हम मोस्ट कॉमनली मॉडिफाइड बास टेक्निक जनरली हम एडवोकेट करते हैं, तो उसमें ये होता है ब्रश के ब्रिसल्स को 45 डिग्री एंगल पे रख करके गम लाइन पर, और उसको वाइब्रेटरी मोशन देना है और उसको फिर डाउन मूव करना है टुवर्ड्स द च्यूइंग सरफेस। तो मॉडिफाइड बास टेक्निक आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आप उसको उसका वीडियो मिल जाएगा कैसे करना चाहिए ब्रश
1: जी, जी।
0: और इसके अलावा आपको जो 18 months से ऊपर मैंने आपको बताया कि 500 ppm टूथपेस्ट यूज़ करना है, 6 years ऑनवर्ड्स जो है एडल्ट टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और ब्रशिंग फ्रिक्वेंसी 2x daily करना है, और इसके साथ साथ डेंटल फ्लॉस जरूर करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस है इंटर डेंटल एरिया जो है वो क्लीन करने के लिए होता है, और वो एक थ्रेड की तरह है, वो फिंगर्स पे लगा के सभी दांतों को बीच में से क्लीन करना चाहिए। आजकल जो है एंगुलेटेड फ्लॉस भी आते हैं, हैंडल वाले फ्लॉस जिसको बोलते हैं राइट एंगल एंगल्ड फ्लॉस, तो उसमें ये है कि हैंडल लगा होता है उसको होल्ड करके आप इंटर डेंटल एरिया को क्लीन कर सकते हैं, उससे कैविटीज़ की और गम्स की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फिर भी आपको रेगुलर एवरी 6 months डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए डेंटल चेकअप के लिए।
1: जी डॉक्टर साहब, इसी बीच में हमारे पास सवाल आ रहे हैं, सरोज मल्होत्रा साकेत मेरठ से लिख रही हैं कि डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे ठीक से ब्रश नहीं करते, क्या करें? अभी आपने जो बताया, और उसके बाद क्या नीम से दांत की का नीम का दातुन करने से बीमारियों से बचाव हो सकता है, और क्या फिटकरी से गार्गल करते रहना ठीक है?
0: देखिए, अगर बच्चे ब्रश नहीं कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को उनको सिखाना है कि कैसे ब्रश करना है, पेरेंट्स मिरर के सामने खड़े होकर पेरेंट्स उनको सिखाएं कि कैसे ब्रश करना है, वो खुद करें और रात को सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें, खुद भी करें बच्चों को भी करवाएं। और दूसरा सवाल था उनका
1: कि फिटकरी से के पानी से क्या गार्गल करने चाहिए?
0: जो बेस्ट माउथ वॉश जो है ना हमारे माउथ के लिए, वो है गुनगुना पानी में हल्का सा नमक डालिए, जो सादा नमक होता है ना, बस वही नमक डालिए और उसको सलाइन बना के, मतलब 0.9% जो होता है, तो जितना आंसुओं में नमक होता है ना, उतना नमक आपको पानी कोस से पानी में डालना है, तो उससे जो है रिंस कर सकते हैं आप ब्रश करने के बाद।
1: और एक सवाल था कि नीम का दातुन क्या दांतों के लिए फायदेमंद है?
0: देखिए, हम यहाँ पर साइंटिफिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड, ठीक है। तो हम जो हैं एज अ डेंटिस्ट, मैं एज अ प्रोफेशनल, मैं तो टूथब्रश एडवाइस करूँगा, सॉफ्ट टूथब्रश करना चाहिए दांतों को क्लीन करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर

0: गए कॉल लाइन पर, उनका कॉल ले लेते हैं।
1: हाँ जी जरूर।
0: हेलो।
2: हेलो,
0: जी
2: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
2: मैं हेमलता बात कर रही हूँ दिल्ली से।
0: जी
2: मेरे दो सवाल हैं डॉक्टर सर से।
0: जी
2: सबसे पहला सवाल मेरा है कि वैसे टेढ़े मेढ़े दांतों को अगर मुझे ब्रेसेस करवाना है तो उसकी कोई पर्टिकुलर एज होती है या हम कभी भी करवा सकते हैं किसी भी एज में? और
0: ओके।
2: अगर हम बड़ी एज में करवाते हैं तो क्या उससे फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि मैंने दांत में ना अपना कैपिंग करवाया था, तो वो 2 साल पहले करवाया था, तो अभी उस जहाँ पे कैपिंग करवाया था जिस दांत में, वो उसमें थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, कभी कभी होता है और समटाइम बहुत तेज भी होता है, तो क्या मुझे वो कैपिंग चेंज करवानी चाहिए? और एक तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हम लोग दांतों की क्लीनिंग के लिए या उनकी वाइटनिंग के लिए हमें साल में हम कितनी बार उसे करा सकते हैं?
0: जी
2: यही मेरे 3 सवाल है।
0: जी
2: थैंक यू।
1: देखिए, आपका जो सवाल था कि कैपिंग करी हुई है दांत के ऊपर और कैपिंग की वजह से आपको पेन हो रहा है। देखो, कैप जो होता है वो तो आर्टिफिशियल मटेरियल है टूथ के ऊपर, तो उसकी वजह से तो पेन नहीं है। पेन तो है कि क्या आपने उस दांत में आरसीटी कराया था कि नहीं कराया था। जनरली आरसीटी के बाद ही हम कैप एडवाइस करते हैं दांत के ऊपर। और अगर अभी भी आपको पेन हो रहा है तो हो सकता है आपने आरसीटी ना कराया, उसमें कैविटी हो जो नीचे नर्व को टच कर रही है, उसकी वजह से पेन हो सकता है। और दूसरा, अगर आप ठीक से इंटरडेंट फ्लो कैप के साथ इंटरडेंटल एरिया में क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं डेंटल फ्लॉस से या इंटरडेंटल ब्रश से, तो वहाँ पर गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी माइल्ड पेन हो जाता है।
0: जी
1: तो आप अपने घर के पास जो भी डेंटिस्ट हैं, आप उनको उनके पास चेकअप कराइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए।
0: सर, इनका सवाल था कि क्या टेढ़े मेढ़े दांत को ठीक कराने की कोई उम्र है या किसी भी उम्र में कराए जा सकते
1: देखिए,
0: हैं?
1: अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो जितना जल्दी कराएंगे उतना ईजिली हो जाएंगे, और जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो जल्दी से जल्दी आपको कराना चाहिए इसका।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और सवाल आया है व्हाट्सएप पे। सुनील कुमार विश्वकर्मा लखनऊ से पूछ रहे हैं, क्या टूथपेस्ट के स्थान पर दंत मंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है? इनकी उम्र 52 वर्ष है और ज़्यादातर दांत इनके घिस चुके हैं, ऐसा लिखा है इन्होंने।
1: देखिए, जो मंजन जिसको हम टूथ पाउडर कहते हैं,
0: जी
1: वो जो है एब्रेसिव होता है, वो दांत को घिस देता है। आप खुद ही कह रहे हैं कि दांत घिस गए हैं, वो दांत घिस ही इसलिए गए हैं कि आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं।
0: जी
1: तो हम पाउडर नहीं एडवाइस करते हैं यूज़ करने के लिए। टूथ पेस्ट यूज़ करना चाहिए, फ्लोराइड वाला टूथ पेस्ट, जिसमें कि एडल्ट में एटलीस्ट 1000 mg/ppm 1000 ppm का फ्लोराइड होना चाहिए, तो पेस्ट यूज़ करना चाहिए।
0: जी। दिनेश कुमार भंडारी हमें नेपाल से लिख रहे हैं कि उनकी उम्र 37 साल है और जो उनके दांत हैं गम से खून निकलता है, क्या समस्या है ये इन्हें बताएं प्लीज़।
1: अगर आपको कोई जनरल बीमारी या सिस्टेमिक बीमारी नहीं है तो उसका जो मेन रीज़न जो होता है गम्स में से ब्लीडिंग का, वो लोकल फैक्टर्स जो कि प्लाक जो गम्स के आसपास डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जिंजिवाइटिस या पेरिडोनटाइटिस हो जाता है। तो ब्लीडिंग होती है ब्रश करते टाइम, कई बार अपने आप भी होना शुरू हो जाता है ब्लीडिंग। तो उसका मैंने पहले भी बताया कि आपको ओरल हाइजीन जो है ठीक रखना है, ब्रशिंग ट्वाइस करना है, जिस टेक्निक से बताया वैसे करना है, और सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, और इंटरडेंटल ब्रश या फिर डेंटल फ्लॉस करके प्लाक को कंट्रोल करें। अगर आपके दांतों के आसपास टार्टर डिपॉजिट हो गया है, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, तो उसका आपको प्रोफेशनल स्केलिंग एंड क्लीनिंग करा करके एक बार कराना होगा। उसके बाद उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं दांतों को।
0: जी डॉक्टर साहब, अंगद यादव आजमगढ़ यूपी से हमें लिख रहे हैं कि इनका 5 साल का बच्चा है जिसके ऊपर के दांत काले दिखाई दे रहे हैं और सामने के दांत जो हैं आधे आधे गल गए हैं। बच्चा रात में रोता है और उसको दर्द की शिकायत रहती है। डॉक्टर के पास ये गए थे और उन्होंने बोला है कि बच्चा छोटा है, दांत का दर्द नहीं, उसे किसी तरह की और वजह से दर्द हो रहा है। बच्चे के का दांत जो है वो भी दूध का दांत है, क्या करें?
1: देखिए, 5 साल की उम्र है तो वो दांत तो उसके दूध के ही हैं, डेसिड्यूस टीथ जिसको हम कहते हैं। तो अगर उसके दांत काले हो गए हैं, या तो उसमें कैविटीज़ हो गई हैं, या फिर उसको कभी चोट लगी होगी जिसकी वजह से वो डेड हो गए हैं दांत, उसकी वजह से भी काले हो जाते हैं। तो अगर उसको उसमें दर्द हो रहा है तो आपको चेकअप ही कराना पड़ेगा, तो क्या दांतों की वजह से है या नहीं है। अगर है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कराना होगा, यही है इसका।
0: डॉक्टर साहब, मुँह से जुड़ी परेशानियों की बात करेंगे लेकिन उससे पहले कॉलर हैं कॉल लाइन पर, ले लेते हैं उनको कॉल। हेलो हेलो हेलो,

0: लगता है कॉल कट गया है। सर हम अभी बात कर रहे थे दांतों की, अब मैं बात आपसे करूंगी मुंह से जुड़े स्वास्थ्य की। एक बेहद कॉमन प्रॉब्लम है मुंह से दुर्गंध आना। ये समस्या कई बार उन लोगों को भी परेशान करती है जो अच्छे से ब्रश करने के साथ साथ टंग क्लीनिंग पर भी ध्यान देते हैं, इसका कारण क्या है?
1: देखिए, मुंह से स्मेल आना जिसे हेलिटोसिस हम कहते हैं, वो मोस्ट कॉमनली तो गम्स की प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से होती है। जैसे आपने बोला कि ब्रश करते हैं, तो ये नहीं बताया आपने कि फ्लॉस भी करते हैं। मैं बार बार एडवोकेट कर रहा हूँ कि ब्रश भी करना है, फ्लॉस भी करना है। डेंटल फ्लॉस जो एक धागे की तरह होता है, वो सभी को डेली करना चाहिए फ्लॉस। तो फ्लॉस आप साथ में करिए, इंटरडेंटल एरिया क्लीन रहेगा तो उसकी वजह से स्मेल नहीं आएगी। अगर ये तो है लोकल फैक्टर जो गम्स की वजह से हो जाता है, या कुछ कैविटीज हैं आपके दांतों में बहुत बड़ी बड़ी जिसके अंदर के फूड डेब्रिज रह जाते हैं, क्लीन नहीं हो पाते, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वो फाउल ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, तो कैविटीज की वजह से भी हो सकती है। तो अगर आपके ओरल हाइजीन पहले चेकअप कराइए, अगर सब ठीक है तो उसका कुछ सिस्टेमिक कारण भी हो सकता है। अगर कुछ आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हेलिटोसिस हो जाती है, या ENT की जैसे पैरानेजल साइनसिस में कोई साइनोसाइटिस है उसकी स्मेल भी इसी तरह माउथ के करीब आती है, तो इस तरह से हो सकती है।
0: जी, मुंह के अंदर दुर्गंध आने का कारण हमारा पाचन तंत्र भी
1: हो सकता है
0: पेट से जुड़ी परेशानियां। डॉक्टर साहब, टंग क्लीनिंग जो है वो एक ओरल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ सर ये भी बताइए कि मुंह में छाले हो जाना जो कई बार एक बड़ी समस्या बन जाता है, खासकर गर्मी के सीज़न में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह है? क्या ये छाले ही अल्सर हैं या कुछ और कैसे इनका निदान किया जा सकता है?
1: देखिए, टंग क्लीनिंग तो जरूर करना चाहिए। जब हम ब्रश करते हैं सभी, तो उसी ब्रश से आप टंग को भी क्लीन कर सकते हैं। तो टंग जो है नॉर्मली पिंक कलर का होता है, तो ऐसे उसके ऊपर कुछ डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए, ब्लैक या वाइट कलर का। तो अगर कुछ है तो उसका चेकअप होना चाहिए। तो सेकंड सवाल था आपका कि मुंह में छाले हो जाते हैं। देखिए, छाले तो बहुत तरह के मुँह में हो जाते हैं। बहुत कॉमन जो है वो तो है एप्थस अल्सर होते हैं, वो जनरली होते हैं स्ट्रेस की वजह से, या नींद ना पूरी हो उसकी वजह से, या कुछ कई बार क्या होता है कि जैसे फीवर हुआ तो उसकी वजह से ब्लिस्टर्स हो जाते हैं मुंह के अंदर या लिप्स के पर। तो ब्लिस्टर जब रप्चर होते हैं तो वो जो है वायरल हर्पिस इन्फेक्शन की वजह से भी जो है छाले हो जाते हैं। और इसके अलावा कोई दांत कहीं शार्प है या कोई कैक आर्टिफिशियल क्राउन लगा हुआ है वो शार्प है, उसके रेगुलर ट्रॉमा की वजह से भी मुंह में अल्सर हो जाते हैं। और कुछ लोगों को जो है हैबिट होती है टोबैको खाने की या स्मोकिंग की, तो उनमें भी अल्सर हो जाता है। तो अगर कोई भी अल्सर, किसी भी तरह का अल्सर है, 2 से 3 हफ्ते की अगर उसकी हिस्ट्री है तो उसका बायोप्सी इज मस्ट, वो मैंडेटरी है कि उसका बायोप्सी होना चाहिए। अब सेल्फ मेडिकेशन या एक खाली मेडिकेशन से ट्रीटमेंट नहीं होगा, बायोप्सी से रूल आउट करना है कि कहीं इसके अंदर कोई कैंसर की शुरुआत नहीं हो गई है। तो इसलिए जो है,
0: क्या ये ओरल कैंसर से भी सर रिलेट करता है?
1: हाँ जी, बिल्कुल। कोई कुछ रेड फ्लैग फीचर्स होते हैं अल्सर के अंदर, वही मैंने स्टार्ट किया था कि अगर 2 to 3 weeks से ज़्यादा कोई भी अल्सर है तो उसकी बायोप्सी होना चाहिए। अगर कोई अल्सर जो है, अगर हम उसको फील करें और वो रफ फील हो रहा है, फर्म फील हो रहा है, थिक फील हो रहा है, तो वो एक रेड फ्लैग फीचर है कि वो कन्वर्ट हो सकता है कैंसर की तरफ, उसमें हो सकता है। इसके अलावा अल्सर के साथ साथ अगर जॉ बोन के नीचे या मुंह के आसपास कोई स्वेलिंग हो रही है, कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो उस वो भी एक फीचर है, रेड फ्लैग फीचर जिसको कि हम बोलते हैं। अगर पेशेंट को जीरोस्टोमी है, ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर और साथ में अल्सर है, तो वो भी एक रेड फ्लैग फीचर है, उसमें कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अल्सर्स अलग अलग तरह के होते हैं, वो एक स्पेशलिस्ट को दिखा करके आप चेकअप कराइए और ट्रीटमेंट लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम से नहीं होता तो उसका बायोप्सी करा करके उसका डायग्नोसिस होना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं, ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो।
2: हेलो
0: जी,
2: साहब नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार,
2: कैसे हैं आप?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
2: मैं अच्छा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम से प्रोग्राम का दिल सचाता हूँ।
0: जी जी,
2: और डॉक्टर साहब का भी शुक्र अपने दिल से करना चाहता हूँ।
0: जी जी, आप सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: मेरा सवाल ये है जी, मेरा जार दांत, एक जार मेरी फूट रही है और वो कभी चीज जाती है, कभी बंद हो जाती है, और मेरा जार दांत

0: कभी चीख जाता है, कभी बंद हो जाता है, ठंडा गर्म लगता है
1: जी।
0: अब कोलगेट कौन सा रखना चाहिए जी?
1: जी जी
0: सवाल है जी,
1: जी आपने सवाल इनका सुन लिया डॉक्टर साहब, इनकी दाढ़ की शायद प्रॉब्लम है।
2: हाँ, ये बोल रहे हैं कि सेंसिटिविटी होती है, तो हमने नॉर्मली देखा है कई पेशेंट्स या जनरल पब्लिक जो है, कभी भी सेंसिटिविटी होती है तो वो टेलीविजन पे या रेडियो पे एक एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं कि सेंसिटिव पेस्ट लगा स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमें जो है ऐसे टीवी पर या कहीं एडवर्टाइजमेंट देख करके सेंसिटिव पेस्ट अप्लाई करना नहीं शुरू कर देना चाहिए। तो आपको अगर सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी के बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे कि दांत घिस गए हैं या दांत कहीं से क्रैक हो गया है, दांतों में कैविटीज़ हो गई हैं, गम्स नीचे चले गए हैं, दांतों को छोड़ करके रूट्स एक्सपोज हो गई हैं, उसकी वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है। तो कई कारण हैं, टूथ क्रैक हो गया है उसकी वजह से हो सकता है। तो पहले तो डायग्नोसिस होना चाहिए कि सेंसिटिविटी हो क्यों रहा है। अपने आप जो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, ओवर द काउंटर जाके सेंसिटिव पेस्ट नहीं लगाना चाहिए, और जो है आप डेंटल चेकअप कराइए और जो भी उसका डायग्नोसिस है फॉर उसका फिर ट्रीटमेंट होना चाहिए।
1: जी, प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीज़ पर आज हमें बहुत बेहद जानकारी, खास जानकारियां मिल रही हैं, और ये जानकारियां हमारे साथ साझा कर रहे हैं डॉक्टर हरमीत सिंह। कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात कर रहे हैं दांतों और मौखिक स्वच्छता से जुड़े खास विषय पर। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं TMJ की, तो ये किस तरह की बीमारी है और इसके होने के कारण क्या है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है?
1: TMJ, उसको जैसे कि टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं, वो
0: जी
1: एक जॉ बोन का जॉइंट है।
0: जी
1: जैसे नी जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट होता है, ऐसे जॉ का भी एक जॉइंट है, इसको TMJ बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जो डिसीजेज हैं उसको हम टेम्परोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो जनरली ये होता है, इस पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो उनको ये बोलते हैं कि उनको मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जॉ मूवमेंट में। सुबह उठते हैं तो उनको जॉ मूवमेंट करते टाइम पेन स्टार्ट होता है। पेन जो है माइल्ड टू मॉडरेट होता है, और वो कान के आसपास या जॉ में या कान के ऊपर या कान के बैक साइड में, कई बार नेक तक पेन हो जाता है। तो वो TMJ की वजह से हो सकता है, तो उसका चेकअप कराना चाहिए। तो जनरली उसका हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि आजकल हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें स्ट्रेस बहुत होता है।

0: है स्ट्रेस लेवल, और स्ट्रेस की वजह से वो सारा दिन जो है अपने जॉब को क्लिंच करते रहते हैं,
1: जी
0: और कई बार तो अनकॉन्शियसली सोने के बाद भी वो जॉब को क्लिक करते रहते हैं, जॉ को ग्राइंड करते रहते हैं, टीथ को ग्राइंड करते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो मसल्स हैं जॉ की वो जो है स्ट्रेस में आ जाती हैं, स्पाजम में चली जाती हैं, तो उसकी वजह से जॉ में स्टिफनेस हो जाता है, तो फिर मॉर्निंग में पेन करता है
1: जी।
0: तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए करना ये है कि सबसे पहले तो स्ट्रेस रिलीव करना है कि स्ट्रेस को कैसे रिलीव किया जाए, चाहे आप योगा करके करिए, चाहे एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, तो स्ट्रेस को रिलीव करना है। इसके साथ साथ स्ट्रेस के अलावा सेकंड रीज़न जो नॉर्मली टेम्परामेंटल और जॉइंट डिसऑर्डर्स का होता है वो स्लीप, स्लीप अगर प्रॉपर ना ली जाए, नींद पूरी नहीं हो रही है स्ट्रेस की वजह से, तो जैसे हम एडवाइस करते हैं 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, उसी तरह TMJ के लिए भी 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो मैं एक एडवाइस करूँगा स्लीप हाइजीन फॉलो करना चाहिए, स्लीप हाइजीन। तो उसमें यह है कि कोई भी इंसान उसको जो है एक कांस्टेंट टाइम पर सोना चाहिए और कांस्टेंट टाइम पर उठना चाहिए, सेम टाइम पर। जैसे रात को अगर 9 बजे 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ उसी टाइम ही सोएं, और उसे सुबह 5-6 बजे उठ रहे हैं तो उसी टाइम ही उठना चाहिए, और दोपहर का या दिन में अगर सोने का टाइम है तो वो उसको लिमिटेड रखें कम से कम, और रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल और स्क्रीन टेलीविज़न जो है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, और जहां आपको सोना है वहां पर आपको नॉइज़ कम कर देनी चाहिए, नॉइज़ नहीं आना चाहिए, लाइट डिम कर देनी चाहिए, और कैफ़ीन को दोपहर के बाद नहीं लेना चाहिए। कैफ़ीन मीन चाय कॉफ़ी जैसे ड्रिंक्स लेते हैं वो शाम को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तो उसका क्योंकि इफ़ेक्ट रहता है कि नींद नहीं आएगी फिर आपको, और रात के टाइम खाना जो है लाइट खाना चाहिए, और जनरली 2 to 3 hours बिफोर बेड डिनर हो जाना चाहिए, और डेली आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसकी वजह से आपको नींद प्रॉपर आएगी, स्ट्रेस नहीं होगा, तो आपका टेम्परोमेंडिबुलर जॉइंट के डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण यही है। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, वो आपको डेंटल चेकअप कराएंगे तो फिर पता चलेगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने स्लीप हाइजीन पर इतनी गहरी हमें अच्छी जानकारी दी, तो इसका मतलब तो ये है कि जो हम अपनी दिनचर्या है अगर उसको अच्छा रखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा,
0: आपके हेल्थ के लिए, जनरल हेल्थ के लिए भी ये सब अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने TMJ की बात करी, जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें लिखती है, व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर TMJ डिसफंक्शन एंड व्हाट इज द बेस्ट क्योर फॉर दिस?
0: The reason I have already told you that it is because of the stress and sleep disturbance. Sometimes there is malocclusion or defective restoration, or if there is artificial teeth, occlusion is not there proper. So that all can cause TMJ disorder. So treatment I already explained, stress should be relieved and proper sleep should be taken.
1: Dr. Saab, ek aur important question hai ki, ab baat unki kar lete hain jo denture ka istemal karte hain, unki oral health कितनी इम्पॉर्टेंट है और डेंचर्स के टाइप क्या हैं, क्या इसको लगाने के बाद मुंह की सफाई यानी हाइजीन को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं?
0: बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। जैसे कि अभी हमने स्लीप हाइजीन की बात की, ऐसे ही हम अब डेंचर हाइजीन की बात करना बहुत जरूरी है फॉर द डेंटिस्ट, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आर्टिफिशियल डेंचर पहनते हैं, जैसे कि कंप्लीट डेंचर अपर लोअर है, या रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है, या फिक्स पार्शियल डेंचर है, कुछ लोग इम्प्लांट्स लगाते हैं उसके ऊपर क्राउन लगा होता है, तो इनका हाइजीन मेंटेन कर, जो तो फिक्स्ड हैं उसको तो आपको डेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रश करके आपको जो है उसको क्लीन रखना है, और जो रिमूवेबल डेंचर है उसको जो है आपको रेगुलर क्लीन करना है, और रात को सोते टाइम तो उसको उतार करके एक डेजिग्नेटेड जो कंटेनर है रखने के लिए आपने रखा हुआ हो उसके अंदर रखना चाहिए, ताकि गम्स जो है दांतों के नीचे गम्स हैं उनको जो है रेस्ट मिले। और डेंचर हाइजीन के लिए मैं आपको बताऊंगा, ट्रेडिशनली जो था वो ये है कि वेट स्टोरेज, डेंचर को जो है पानी में रखा जाता है ताकि वो जो है उसका जो मटेरियल है वो डैमेज ना हो, या मीन उसमें कुछ चेंजेस ना आए, तो उसको क्लीन जो है कि वो कैसे करना है, जैसे ही आपने डेंचर उतारा उसको सबसे पहले तो उसको वाटर से क्लीन करना है, एक सॉफ्ट ब्रश लेना है, उसके साथ जो भी फूड डेब्रीज हैं उसके ऊपर उसको क्लीन करना है, तो डेंचर को टूथपेस्ट के साथ नहीं, क्योंकि उसके अंदर एब्रेसिव होता है तो उसके साथ नहीं करना चाहिए, अब नॉर्मल सा एक सोप सोल्यूशन बना करके तो उससे आप क्लीन कर सकते हैं डेंचर को, बट अगर उसमें कोई स्टेन्स हो रहे हैं दांतों के ऊपर।

0: या कोई स्मेल आ रही है या किसी तरह से, तो उसके लिए डेंचर क्लींजिंग टैबलेट्स आते हैं, ठीक है। तो वो उसमें बॉक्स में डाल करके उसको कुछ घंटे के लिए उसके अंदर छोड़ सकते हैं, क्योंकि टैबलेट्स के अंदर वाटर में डालने से एफर्वेसेंट्स आते हैं, उसमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट होते हैं, और बफर होता है जो कि उसको डिसॉल्व करता है उसके अंदर जो भी डेब्रिज हैं उसको क्लीन करने के लिए। इसके अलावा अगर टैबलेट्स नहीं है तो विनेगर जो होता है, जो एसिटिक एसिड होता है, उसको डाइल्यूट करके 1:4 वाटर से डाइल्यूट करके, तो उसके अंदर हम कुछ घंटे के लिए या ओवरनाइट रख सकते हैं, बट उसको थॉरली रिंस कर लेना चाहिए सुबह उठ करके अच्छे से बिफोर यू पुट इन द माउथ, तो उसको क्लीन करना है। और इसके अलावा जो आजकल जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, तो आजकल जो डेंचर बन रहे हैं वो बहुत अच्छे मटेरियल से बन रहे हैं, एक्रेलिक जो है अच्छी क्वालिटी का है, तो उसमें डिस्टोर्शन नहीं होता। तो अभी जो एडवोकेट करते हैं कि डेंचर को जो है आप उतारने के बाद वॉश करके, क्लीन करके, ड्राई करके आप ड्राई कंटेनर में रखिए, क्योंकि उसमें श्रिंकेज के चांसेस नहीं हैं, वो डैमेज नहीं होगा। तो अगर गुड मटेरियल का है तो उसको आप ड्राई स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो ड्राई स्टोरेज का फ़ायदा यह है कि उसके अंदर जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो नहीं करेंगे, तो उसमें चांसेस ऑफ कैंडिडाइसिस नहीं होंगे पेशेंट को, तो ड्राई स्टोरेज कर सकते हैं। बट जैसे कि आपको डेंटिस्ट ने या मैन्युफैक्चरर ने आपको रेकमेंड किया है, आपका मटेरियल कैसा है उसको फॉलो करें, ठीक है। और डेंचर से एसोसिएटेड पेशेंट को जो है कैंडिडाइसिस, मुंह के अंदर सफ़ेद निशान हो जाते हैं, मतलब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो डेंचर जो है क्लीन करना चाहिए प्रॉपरली। और एंगुलर केलाइटिस जिसको बोलते हैं कि माउथ के कॉर्नर पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहाँ पर बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, उसका मेन कारण तो होता है कि आपका जो डेंचर है अगर वो लूज़ हो गया है या फिर उसकी हाइट कम बनी है, तो उसके माउथ के कॉर्नर पर जो है फोल्ड होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर एंगुलर केलाइटिस हो जाता है। तो डेंचर की हाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, अगर डेंचर स्टेबल है और वो उसमें हिलता नहीं है, लूज नहीं है, तो फिर वो डेंचर एंगुलर केलाइटिस और कैंडिडाइसिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं ब्रेसेस जो इस्तेमाल करते हैं उनकी, और जिनके दांतों में ब्रेसेस लगे हैं उनको दांतों की सफाई उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है, ऐसे में कैसे दांतों की सफाई के साथ ओरल हेल्थ को भी बेहतर रखा जा सकता है?
0: देखिए ब्रेसेस जो है दो तरह के आते हैं, एक तो रिमूवेबल ब्रेसेस होते हैं और फिक्स्ड ब्रेसेस होते हैं। रिमूवेबल को तो आपको रोज मतलब निकाल करके उसको वैसे ही क्लीन करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है, रिमूवेबल ब्रेसेस को ब्रश से सोप सॉल्यूशन से क्लीन करना है। इसके अलावा जो फिक्स्ड ब्रेसेस हैं जिसको कि हम नहीं पेशेंट अपने आप नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए उसके लिए स्पेशल ब्रश आते हैं, ऑर्थो ब्रश नाम से ब्रश आते हैं, तो उससे जो है क्लीन हाइजीन क्लीन रखना है। इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करके आप उसको एरियाज को क्लीन रख सकते हैं, तो कहीं पे फूड डेब्रिज या प्लाक डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो अगर प्लाक रहेगा तो उससे टीथ में लूज होने के और ऑर्थो ट्रीटमेंट फेल होने के चांसेस रहेंगे। तो हाइजीन इम्प्रूव करके रखना बहुत ज़रूरी है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के अंदर भी।
1: जी जी डॉक्टर साहब, सागर हमें विजयपुरा कर्नाटका से लिख रहे हैं कि वॉट ओरल रूटीन वी कैन फॉलो टू कीप आवर टीथ एंड ओवरऑल ओरल हेल्थ इन गुड कंडीशन। और हमारा भी आपसे यही सवाल है कि अब कार्यक्रम में समय बहुत कम रह गया है, तो कैसे अपने दांतों और अपने जो मुंह के स्वास्थ्य को हम अच्छे से रख सकते हैं, इसके लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं?
0: देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा इन्होंने और लास्ट में है, क्योंकि अब समय कम रह गया है तो हमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो ये है कि पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो भी कॉरपोरेशन से सप्लाई आते हैं उसमें 1% फ्लोराइड होता है, 1 ppm फ्लोराइड होना चाहिए। तो कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेशन एक वन मेथड है जिससे कि कैविटीज़ को, दांतों की कैविटीज़ सड़न को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा स्कूल लेवल पर एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए कि ब्रशिंग टेक्निक कैसे करना चाहिए, फ्लॉस कैसे करना चाहिए। आजकल तो बुक्स में भी दिया हुआ है, NCERT बुक्स में भी अवेलेबल है कि ब्रशिंग और फ्लॉसिंग कैसे करना चाहिए। और इसके अलावा डेंटल फ्लॉस, इंटरडेंटल ब्रश मैंने आपको बता ही दिया। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कोई भी टूथपेस्ट उठा करके या पाउडर से या ऐसे जो एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए एडल्ट में एटलीस्ट 1000 ppm, चाइल्ड में बिलो 6

0: यार 500 ppm टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। और टूथपेस्ट जब जब ब्रश किया टूथपेस्ट के साथ, तो आपको स्पिट करना है 10 मिनट तक, पानी से रिंस नहीं करना, ताकि जो पेस्ट का इफेक्ट है दांतों के ऊपर वो रहना चाहिए। तो स्पिट करें ब्रश करने के बाद 10 मिनट तक, पानी से रिंस नहीं करें, 10 मिनट के बाद आप रिंस करिए। इसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशन होती हैं कि आप जो है शुगर का कंजम्पशन मींस मीठे का जो है कम से कम रखें, स्टिकी और एसिडिक फूड,
1: और खासकर रात में,
0: खासकर रात में बिल्कुल, और स्टिकी फूड जो है जो दांतों पे चिपके रह जाते हैं उसको जो है अवॉइड करना चाहिए। एसिडिक फूड जैसे कि लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोलास पीते हैं तो उसको जो है अवॉइड करना चाहिए। और
1: सर अगर कभी स्टिकी फूड लेते भी हैं तो उसके बाद हमें एकदम ब्रश करना,
0: हाँ, इसके बाद बिल्कुल उसके बाद तुरंत बाद ब्रश कर लेना चाहिए। और जैसे कुछ बच्चों को जो है टॉफीज या चॉकलेट्स रेगुलर नहीं देना चाहिए, उनको ओकेजनली कभी बर्थडे पे या दे सकते हैं, तो उस टाइम आप उसी टाइम जो है साथ में ब्रश जो है वो कर लेना चाहिए। और एवरी 6 मंथ जो है डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। और बच्चों में जो है पिट एंड फिशर सीलेंट्स होते हैं, तो वो हम एडवाइस करते हैं कि अगर वो अगर पिट एंड फिशर्स हैं, उनको प्रोन है कैविटीज के, तो सीलेंट्स लगा करके कैविटीज को होने से रोक सकते हैं, डेट इज प्रिवेंटिव मेजर। इसके अलावा हम जो जैसे कि व्हाइट स्पॉट लीजन्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैविटीज जो स्टार्ट होती हैं व्हाइट स्पॉट लीजन से स्टार्ट होते हैं, अगर वहीं पर हम कैविटी फ्लोराइड वार्निश या फ्लोराइड जेल अप्लाई करते हैं तो वो केरीज जो है कैविटीज में कन्वर्ट होने से रुक जाती है। और अगर फिर भी आपको शुगर लेना ही है तो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं, नेचुरल स्वीटनर आते हैं, जैसे स्टीविया है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, वो मीठा है बट उसके अंदर शुगर नहीं है, तो आप चाय में या दूध में।
1: और इसके अलावा सर हम फ्रूट्स भी तो ले सकते हैं जिनसे हमें नेचुरल स्वीटनेस मिलती है, जो
0: हाँ नेचुरल फ्रूट आप खा सकते हैं, बट उसमें भी कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, तो फिर भी आपको उसके बाद भी ब्रश तो करना ही है, ब्रश करना चाहिए। हाँ जी,
1: तो साथियों ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो था प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीज से जुड़ा, जिसमें हमने जाना कि कैसे रखें अपने मुंह के स्वास्थ्य को और दांतों के स्वास्थ्य को बेहतर, और इस पर हमें बेहद खास जानकारी दी डॉक्टर हरमीत सिंह जी ने, जो हैं डेंटल स्टाफ सर्जन डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी खास जानकारी हमें दी। और इसके साथ आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी। दोस्तों जिंदगी बारे गल करते हैं। सब तो पहला ए जिंदगी मैं तेनू प्यार करता हाँ, मैं तेनू प्यार करता हाँ, भावे तू कई बार बेरहम बन जाती है, भावे तू कई बार रस्ते औखे कर दिनी है, भावे तू कई बार रातां नू हंजुआ नाल भिजा दिनी है, फिर भी मैं तेनू प्यार करता हाँ, क्योंकि तू ही है जिसने मैनू सा लेना सिखाया है, हसना सिखाया है, डिग के उठना सिखाया है, तू ही है जिसने मैनू दुख का मतलब समझाया है, सुख की कदर करनी सिखाई। जो तो मैं छोटा सी तां मैनू लगता सी कि मैं जिंदगी सिर्फ एक खेड है, मेले हन, गुड्डियां गुड्डे हन, फिर थोड़ा वड्डा होया तां पता लगा कि जिंदगी इम्तिहान है, नंबर हन, रिजल्ट हन, उम्मीदा हन। जो तो जवान होया तां समझ आया कि जिंदगी चोणा हन, फैसले हन, रिश्ते हन, टुटना बनना है। पर हुण जदों मैं अपने दिनां वल पिछे मुड़ के देखदा हाँ ना, तां समझ आउंदा है कि जिंदगी इहना सब तो कुछ होर है। जिंदगी एक कहानी है जिसका लेखक मैं आप हाँ। कुछ पन्ने मैं स्याही नाल परे हन, कुछ पन्ने हंजुआ नाल, कुछ पन्ने खाली छड़ दिते हन, तां जो कल नूं मैं कुछ नवा सीख सका। मैं तैनूं प्यार करदा हाँ जिंदगी, क्योंकि तू मैनू सवेर दिनी है, जो तो रात दे हनेरे तो बाद सूरज दी पहली किरण खिड़की चो अंदर आती है, तो मैनू लगता है कि तू फिर तो मैनू मौका दे रही है, पुरानी गलतियां सुधारन दा, नवे सुपने वेखण दा, किसे अणजाण नू मुस्कुराहट देण दा। तू मैनू ओह लोग दिनी है जो बिना कारण मेरी हाथ फड़ लैंदे हन, मां दी गोदी, प्यो दा मोढा, दोस्त दी हासी, अध्यापक दी चिड़क जिस विच प्यार लुकिया हुंदा है। तू मैनू ओ रिश्ते देनी है जो खून नहीं दे, जो खून नहीं हुंदे पर रूह दे हुंदे हन। जो तो दुनिया मुंह मोड़ लेंदी है तां यही लोग कहंदे हन कि असियां डरना, एहो कुछ पल, एहो कुछ चेहरे, एहो कुछ शब्द हन जिन्हां करके मैं तैनू प्यार करदा हां।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक

दोस्तों तुम सुन रहे प्रोग्राम लव यू जिंदगी। तो दोस्तों कल चल रही सबर ते हम गल करते हैं कि सबर किवें सीखिए। ए चार अमली तरीके ने। पहला है बोरिंग नू गले लगाओ। समझ रहे हो ना दोस्तों, बोरिंग नू गले लगाओ। महान काम बोरिंग दोहराओ नाल बन दे कहते। रोज 30 मिनट कोई एक काम बिना फोन ते करो, मन भटकेगा वापस लियाओ। यही सबर दी भी जिम है। उस तो बाद गल आती है म्याद वधाओ। अपने टीचिया का समा सीमा 3 गुणा कर दो। जो लगता है 6 महीने विच कारोबार चलेगा तो 18 महीने की योजना बनाओ। इस नाल तुरंत नतीजे का दबाव घटेगा दोस्तों। उत्पादन की गल हाले नहीं दा अभ्यास, हाले नहीं दा अभ्यास। मतलब हाले नहीं दा अभ्यास करना। आपा कहते ना जो तो मन कहे बस होर नहीं तो 5 मिनट होर काम करो। यही 5 मिनट थोड़ी सबर मांसपेशी बनाते हैं। कुदरत तो सीखो कि बांस 4 साल जमीन के हेठा जड़ा बनाता है, 5वें साल 90 फुट उच्चा हो जाता है। कि वह 4 साल बेकार सन? नहीं, वह सबर दे साल सन दोस्तों। आखिरी गल करते हैं कि सबर का जिहड़ा इनाम है सिर्फ सफलता नहीं सुकून है। सबर का सब तो वड्डा इनाम पैसा या नाम नहीं होंदा, वह सुकून होंदा है दोस्तों। जदों तुसी जानते हो कि तुसी अपना 100% दिता है तो नतीजा जो भी होवे मन शांत रहिंदा है। बाबा नानक जी ने कहा है कि काली खाई किछ हथुए दे, नानक राहू पछाणी सही। काल यानी मेहनत, ते उस मेहनत विच सबर छुपया है। अज तो अपने काम नू सबर दी जड़ी नज़र नाल वेखो। पुछो कि मैं किसान वांग बीज बीज के रोज पानी दे रहा हाँ, जा जादू दी छड़ी दी उड़ीक कर रहा हाँ। याद रखो दोस्तों कि पहाड़ भी बूंद बूंद पानी दे सबर नाल कटिया जाता है। थोड़ा काम, थोड़ा सुपना, थोड़ी मंजिल सब सबर मांगते हैं दोस्तों। अते जिस कोल सबर है समा उस दे नाल ही है।

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं था अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों एक सबर दी जीत की कहानी सुनाना। एक कहानी है बीबी जसवीर दे टाबे नाम तो। जसवीर कौर का जन्म अमृतसर के एक छोटे जिहे पिंड विच होया। पति की मौत तो बाद 35 साल की उम्र विच ओह तीन बच्चों नाल इकली रह गई। घर विच ना जमीन सी ना पैसा, सिर्फ एक हुनर सी रोटी गोल पकाउण दा। पिंड वाले कहिंदे, बीबी तेरे हाथ दी रोटी खा के ना बंदा रज जांदा। जसवीर ने हिम्मत कीती, घर दे बाहर बोड़ हेठां चूल्हा बालिया, चार मंजे डाए ते जसवीर दा ढाबा शुरू कर। पहले दिन कुल विक्री 40 रुपए, दूजे दिन मीह पै गया, सारा समान भिज गया, गुआंढियां

दोस्तों तुम सुन रहे प्रोग्राम लव यू जिंदगी, ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों 6:53 हो चुके हैं, बस कुछ पल हैं बस। तो पहले एक छोटी जी कहानी थानू जरूर सुनाना चाहूँगा कि एक कहानी है टुट्टी साइकिल ते उड़ान। टुट्टी साइकिल तो उड़ान हरमन की कहानी। हरमन सिंह मोगा जिले के एक छोटे स्कूल में पढ़ता सी। दसवीं विच उसके 45% जिहड़े 45% नंबर आए। मास्टर ने सारी क्लास सामने कहा, हरमन तू तो खेता वाला ही बनेगा, पढ़ाई तेरे वास दी नहीं। घर आके वह खूब रोया। प्यो ने पुरानी साइकिल वल इशारा करके कहा, पुत इसका एक पैडल टुटा है पर फिर भी यह तुरदी है। तू भी एक पासे कमजोर सही, दूजे पासे जोर ला। हरमन नू कंप्यूटर का शौक सी पर घर विच कंप्यूटर कित्थे। और रोज़ 12 किलोमीटर टुट्टी साइकिल दे स्कूल दे लैब वाले जिहड़े सर नू मिलन जांदा सी। सर ने देखे कि मुंडा 2 घंटे खड़ के सिर्फ वो दूजे बच्चों नू कम करदा देखदा रहिंदा। एक दिन सर ने पुछया, तू खुद क्यों नहीं चलाउंदा? हरमन ने हौली जिही कहा, सर मेरी वारी कदे नहीं आउंदी, सारे तेज बच्चे पहला बैठ जांदे हन। सर ने उसनू स्कूल बंद होने तो बाद 1 घंटा देना शुरू कर दिता। बिजली जांदी तां हरमन मोमबत्ती दी लौ विच किताब पढ़दा। उसने सोशल मीडिया ते HTML सीखना शुरू किया। अंग्रेजी कच्ची सी पर उसने हर शब्द डिक्शनरी विच लभ्या। दोस्त मजाक उड़ाउंदे, वेखो कॉडर आ गया जिसनू ढंग नाल पंजाबी नहीं लिखनी आउंदी। 12वीं विच भी उसदे 58% नंबर आए। कॉलेज च दाखनाला मिलिया। हरमन ने हार ना मन्नी। उसने पिंड दे सरपंच दा एक पेज दा जिहड़ा वैबसाइट मुफ्त विच बना दिता। सरपंच ने 500 रुपए फड़ा के कहा, लै पुत तेरी मेहनताना। वो 500 रुपए हरमन लई 5 लाख सन। उसने उन्ना पैसे नाल पुराना लैपटॉप खरीदया जिसकी स्क्रीन टुटी हुई सी। अगले 2 साल उसने पिंड दी लाइब्रेरी विच बैठ के जिहड़ी फलॉसिंग कीती कि पहला गाहक अमरीका तो मिलया $20 दा काम। रात दे 2 बजे तक जाग के उसने अपना काम पूरा किया। गाहक ने 5-स्टार रेटिंग दे नाल $10 टिप भी दिती। हरमन ने जिहड़ा पैसा जोड़ के छोटा जिहा कमरा किराए ते लिया, बोर्ड लिया, पिंड दा पहला कोडिंग सेंटर, पहले महीने सिर्फ 2 बच्चे आए, उसने हार ना मन्नी। पर वह सरकारी स्कूल विच जाके मुफ्त क्लास लगाउंदा। हौली हौली मापिआं नूं समझ आई कि कंप्यूटर सिर्फ गेम नहीं काम भी है। अज 27 साल की उम्र में हरमन की कंपनी पिंड टैंक 30 लोग नाल काम करती है। कैनेडा के दुबई दी कंपनियां विच वैबसाइट बनाउंदा हन। ते उस स्कूल दे जिथे मास्टर ने कहा कि तू खेता वाला बनेगा, हुण हरमन नू मुख मेहमान सगो बुलाया है। दोस्तों उसने अगे कहा कि सफलता टापरा दी जागीर नहीं, सफलता उसकी रोज़ डिग के भी यह कहता है कि कल फिर आवांगा। सबर नाल काम करो, थोड़ी टुट्टी साइकिल भी एक दिन जहाज बन जाएगी।

दोस्तों इसी आज द प्रोग्राम लव यू जिंदगी आई होप तुहानू अच्छा लग्या होगा। दोस्तों आखिर च यही कह के जाऊंगा कि जिंदगी पूरी नहीं होंदी पर सोहनी जरूर बनाई जा सकती है। आओ इस नू मिलके कहिए लव यू जिंदगी। कहिंदे ने चाह दी कि चुस्की प्यारियां गल्लां ते जिंदगी नाल प्यार। एस आज द लव यू जिंदगी। स्टे ट्यून गाइज। आई होप थन मैं फिर दोबारा जल्द ही आऊँगा, थाना गल्ला बातें करूँगा, बहुत सारी कहानियाँ पेश करूँगा। स्टे ट्यून गाइज़।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: और क्या करो, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाइए, जला दीजिए इन्हें, जिस तरह अदालत जाती है उसी तरह जला दीजिए इन्हें। इस आदमी के साथ यही होना चाहिए, बेटे के हाथों आग नसीब नहीं होनी चाहिए इसके शरीर को। जिंदगी भर सच्चाई और इंसान की पूजा करके रहे, इसे सजा तो मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना। हाँ तो सही है, जला दीजिए, चलो भाई लो लो, जला तो बांधो इसे, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन रात का केस सिर्फ ये सच्ची दानंद अग्निहोत्री नहीं बनेगा, बल्कि मेरे बेटे के क्रोध की आग से जसपाल राणा से लेकर कुछ तक सब बनेंगे।
3: बिल्कुल जी, पहचान लिया कि नहीं? जी हाँ, जेकर नहीं पहचाने, साढ़े बहुत सारे दर्शकों ने पहचान लिया होना, इन्हां तो बिना यार पंजाबी फिल्मां भी कई अधूरियां रहियां ने, और इन्हां तो बिना बहुत सारिया बॉलीवुड फिल्मां उस दौर दे विच जिन्हां ने बहुत सारा नामना खटिया, चाहे गल शाहरुख खान साहब होना दी कर लीए, सलमान खान होना दी कर लीए, अजय देवगन होना दी कर लीए, मतलब बहुत सारिया फिल्मों के इन्हां ने वह किरदार निभाया जो अज भी ना भुलण योग ने। जनाब फरीदा जलाल जी, इन्हां दा एक प्यारा डायलॉग तुसीं सुणिया, किस कदर किरदार दे विच खुब के जो ये डायलॉग डिलीवरी करते सी, हमेशा इन्हां दे काम नूं सराहिया गया। फरीदा जलाल भारतीय सिनेमा बॉलीवुड की एक अजिही दिग्गज अते बेहद हरमन प्यारी अदाकारा हन, जिन्हां ने पिछले 5 दहाकियां तों वध समें दे विच अदाकारी दे नाल दर्शकां दे दिलां ते राज कीता। उन्हां ने फिल्मी परदे ते एक वफादार सहेली, एक प्यारी भैन, भावुक पत्नी अते सब तों वध एक लाडली ते ममता नाल भरपूर माँ, दादी जां नानी दे किरदारां नूं इन्नी शिद्दत दे नाल निभाया, वह हर भारती घर का हिस्सा होण लग पए। भावें उन्हां नूं अभिनेत्री हीरोइन वजों बहुत ज़्यादा फिल्मां तां नहीं मिलियां, पर उन्हां ने एक सहायक अदाकारा वलों जो मुकाम हासिल किया वह सुपरस्टार तों घट नहीं है। अज फरीदा जलाल जी के बारे जीवनी बारे गलबात करांगे, उन्हां दीआं भूमिकावां नूं उन्हां दे सिनेमा जगत दे पाए हुए योगदान बारे ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਾ ਜਲਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ। ਅਰਾਧਨਾ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਣੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ 1969 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਲਾ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਇਸ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾ ਜਲਾਲ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਅਰੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਰੇਣੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ

वाजवा, क्या बात है। नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। जो अमिताभ बच्चन साहब हुणा दे नाल किरदार निभाया फरीदा जलाल जी ने, हुण मुख अभिनेत्री वजों चुनौतियां की रहियां फरीदा जलाल जी दियां। कहते बॉलीवुड दे विच एक रिवायती धारणा रही है कि जिस अधिकार अदाकारा नूं एक वार भैण जां सहेली दे किरदार दे विच वेख लिया जावे, उस मुख अभिनेत्री दे रूप दे विच उस नूं स्वीकार करना बहुत मुश्किल हुंदा है। फरीदा जलाल हुणा नाल भी कुछ अजिहा ही होया। उन्हां दी खूबसूरती, दमदार आवाज़, शानदार अदाकारी दे बावजूद उन्हां नूं बहुत घट फिल्मां दे विच मुख अभिनेत्री दे बनण दा मौका प्राप्त होया। उन्हां दीआं कुछ फिल्मां जिवें जीवन रेखा विच मुख भूमिका इन्हां ने निभाई, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस ते कुछ वड्डी सफलता हासिल ना कर सकी। पर फरीदा जी ने हार ना मनी। उन्हां दा मनना सी कि किरदार छोटा जां वड्डा नहीं हुंदा, अदाकारी वड्डी हुंदी है। जी हाँ, एक साडे लई मोटीवेशन दा भी काम करदा है। उन्होंने कहा कि जेकर 19 देखा जाए कि 1990 का दहाका फरीदा जलाल जी के करियर का बहुत सुनहरा सी। ये कहना तो गलत नहीं होगा कि इस दौरान भारतीय सिनेमा बदल रहा सी, परिवारक फिल्मों का दौर वापस आ रहा सी। फरीदा जलाल जी ने इस दौर दे विच मां दे किरदार की नवी परिभाषा बदल दिती। सब तो बेस्ट फिल्म उस दौर की अज भी जो लोगों की पसंद है, DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 दे विच। काजोल जो उस दे विच लीड एक्टर दे तौर ते सीगे, शाहरुख खान होना दे ओपोजिट, सिमरन दी माँ लाजवंती दा किरदार जो इन्हां ने निभाया, वो हमेशा ना भुलण योग रहेगा।

वाह जी वाह, क्या बात है जी। फरीदा जलाल जी दियाँ फिल्मां यादगार बहुत नहीं, और इसे तरीके दे नाल इन्हां बारे गलबात भी करते रहेंगे, तो प्रोग्राम मेरे ख्याल ना इसे तरीके दे नाल चलता रहेगा। एंड इन्हां दियां कुछ होर फिल्मों के बारे वाल गलबात कर लेने हैं, कि पुरस्कार ते सम्मान की गलबात करते हैं कि किस तरीके दे नाल इन्हां ने किस फिल्म के लिए इन्हां नूं फिल्म फेयर अवार्ड मिलिया, किस दे लई इन्हां नूं सर्वोत्तम सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुंदा है। फिल्म मजबूर जो 1975 दे विच आई सी, उस दे लई इन्हां नूं सपोर्ट बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किरदार का इन्हों फिल्म फेयर प्राप्त होंगे। फिर उस तो बाद फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दे 1996 दे विच जो हुंदी है उस दे विच भी इन्हों बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी किरदार प्राप्त होंगे। फिल्म दिल तो पागल है 1998 दे लई इन्हों बेस्ट फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किरदार प्राप्त होंगे। फिर उस तो बाद फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड्स के सर्वोत्तम प्रदर्शन के विच फिल्म ममो 1995 दे विच शानदार मुख्य भूमिका निभाउण दे लई प्राप्त होंगे। उस तो बाद हार्लम इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल फिल्म द ए ग्रीन प्लैन 2012 ਦੇ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਜਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ।

0: मुझे।
1: देख अगर तू रूठी तो मेरी भूख गई।
0: जा जा छोड़ दे मुझे।
1: जा। क्या हुआ?

0: कौन शीला?
1: अरे वही तुम्हारे कॉलेज वाली, उसका जन्मदिन है ना, उसके घर पे पार्टी है।
0: मैं नहीं जाऊंगा।
1: क्या?
0: नहीं माँ, तुझको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा।
1: नाटक मत कर।
2: हाँ जी, 102.7 मेगाहर्ट्ज़ तक आकाशवाणी जलंधर दे उते रेनबो चैनल तुसी ट्यून कर लिया। इस दे नाल तुहानू पता ही है दूजी एक्ट्रेस कमाल दी अदाकारी जिन्होंने मां दा किरदार वड्डे पद्धर दे उते इस तरीके दे नाल निभाया कि इन्हां तों बिना फिल्मां तां पूरियां ही नहीं हो सकदियां सी। मतलब लीड एक्टर एक्ट्रेसिज़ नूं चुन लिया जांदा सी, पर जदों मां दी गल हुंदी सी, पहला असीं गलबात कीती फरीदा जलाल होणा दी, अते उस तों बाद रीमा लागू जी। हमेशा इन्हें तो यह गल लागू होंगी सी कि इन्हों तो परफेक्ट कोई किरदार यह निभा ही नहीं सकता। अजय देवगन होना की जेकर गल की जाए, इस तो इलावा जो बेस्ट किरदार इन्होंने निभाए, कहते

हाँ जी, मुबारक बहुत बहुत मुबारक जी सबनों। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर दे उत्ते। ते ओ तू कौन आ गया? मालिक, हम एक बात बोलें। ओ भरावा तू घरे रह, मैं तेना घरे बुखाते बोना। मालिक एक ठो बात बोलना है। मैं शो करन देंगे कि नहीं करन देंगे? आज एक बात बोलने दीजिए ना। हाँ चल कर गल, की कहना चाहना। एक हम बात बताएं रेडियो पे, तू रेडियो करेगा? नहीं देखिए ना, मसाला मिक्स प्रोग्राम का चल रहा है, हमको भी थोड़ा मिक्स कर लीजिए। हम कहते हैं मालिक। अच्छा चल जल्दी बोल, की कहना चाहना, एक ठो बात बोलें। पाजी जल्दी बोलो, मैं अगे गाने चलाने ने, मैं मसाला मिक्स प्रोग्राम कर रहा हूँ। मसाला मिक्स में हम एक बात मिक्स करना चाहते हैं भाई। चल बोलना, जल्दी बोल। एक ठो बात ये है, थोड़ा दिन पहले ना बहुत तेज आंधी चला था, तो आंधी में ना हमरे कमरे पे जहाँ पे आप सोने को दिए हैं हमको, वो छत के ऊपर ना एक ठो पाए टूट के आ गया है। तो हम सोच रहे हैं, और की सोचन डे तू, हम ही सोच रहे हैं कि उस टाइम तक जब तक दूसरा आंधी नहीं आता है तब तक का इंतजार करें और कि नया टी शर्ट खरीद के ले आए। मतलब तू ये दसन ली इतने आया? तू जाके नवी टी शर्ट ले ला। मालिक हाँ, हम सोच रहे हैं कि नायका आंधी का इंतजार कर लेते हैं। यार तू मेरे तंग ना कर रहे, तू जाके जो दिल करता वो कर ला। मैं कहना तू नवी टी शर्ट ले ला जाके आपे, तू अगली नेरी का इंतजार ना कर। देख हुण पता की होंदा, ऐदा करन दे नाल ना बाकी लोग भी तंग होंदे आ। मैं कहना तू जाके टी शर्ट ही नवी लै ला। देख आ भी असर लापे तेरी गल सुन के। मालिक आप परेशान कर रहे हैं हमको, तो इन्नी देर तक तू की करन दिया मैनू? है मैं चंगा भला प्रोग्राम करन दिया ही आके, वेच आके मैनू कहन दिया मैं आ लै लिया, मैं वो लै लिया, नेरी आ गई, जाऊँगा कि नहीं हूँ जाऊँगा? मालिक हुण की हो गया? एक तो टी शर्ट खरीदवा दीजिए ना, नायका आंधी पता नहीं कब तक आएगा। मैं इनू माड़ा जो संभाल के उन्होंने घर छड़ के आना, तद तक लिया तुम दूजा गाना इंजॉय करो। मैं कहना जिमें जाके आना तो अगली इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें दसागा। इनू मैं घर छड़ के आना, इन्हें हूँ तंग करना। मालिक हम नहीं जाएंगे। तू तो किदा नहीं चाहना? आ गाना सुनो जी।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: हाँ जी मैगा जी 102.7 मेगा हर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर दे उत्ते प्रोग्राम तुसीं इंजॉय कर रहे सी मसाला मिक्स ते एंड लास्ट इन्फॉर्मेशन जो थोड़े नाल शेयर करन जा रहे हैं। कहिंदे राजस्थान दे विच एक मंदिर स्थित है जैसलमेर दे विच भारत पाकिस्तान सरहद दे उत्ते तनोट माता मंदिर है। बहुत चमत्कारी मंदिर है ते पंजाबी सभ्याचार अते फौजियां दे विच इस मंदिर दे प्रति बहुत सारी श्रद्धा है। कहिंदे बॉर्डर वाली माता जां थार वैष्णो देवी इस नूं कहा जांदा है। इस मंदिर दे विच सब तों खास गल है कि इस दी देखभाल पूजा पाठ ते प्रबंधक किसी पुजारी वालों नहीं बल्कि भारतीय सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योर फोर्स वालों की जाती है। कहिंदे 1965 की जंग दे विच इत्थे चमत्कार होया। इस जंग दौरान भारतीय पाकिस्तानी फौज ने इस इलाके के अंदर मंदिर को निशाना बना के लगभग 3,000 बंब सुट्टे सन। इन्हां विचों 450 बंब सीधे मंदिर के वेहड़े के डिगे पर माता का अजिहा चमत्कार होया एक भी बंब नहीं फटिया। मानता है कि इस मंदिर की इमारत उत्थे मौजूद भारतीय जवानों तक एक खरोच भी नहीं आई। अज भी इत्थे बंब मौजूद ने जिहड़े पाकिस्तान बंब इत्थे सुट्टे गए वह अजे तक भी नहीं फटे और एक म्यूजियम दे विच इस ना श्रद्धालुओं के देखने लिए ये रखे हुए ने। 1971 की जंग जदों पाकिस्तान टैंकों ने लौंगोवाला पोस्ट पर हमला किया जिस ते मशहूर बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर बनी है उदों भी भारतीय फौज के मुठ्ठी भर जवानों ने तनोट माता की मेहर सदका पाकिस्तानी टैंकों के परखच्चे उठा दिते सन। जंग जितण तो बाद BSF ने मंदिर दे विच एक विजय स्तंभ भी बनाया है। सो थानू प्रोग्राम दे विच बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थानू सुनन मिलियां होणगियां एंड इस दे नाल ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਗਾਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇ ਟਿਊਨ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: प्रसारक को प्यार भरी नमस्कार। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जी, जसवीर जसी जी, सीता और गीता, एनी सॉन्ग में हमें शामिल कर लीजिए। खुश रहो, आबाद रहो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। 102.7 MHz आकाशवाणी जलंधर दे उत्ते मैं तुहाड़ा मित्र RJ परविंदर इस प्यारे जिहे गीत दे विच इन्हां नूं शामिल कर लैंदे हां, एंड उस तों बाद अगलियां फरमाइशां वल वधदे हां।
1: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम, तुम।
1: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ

हाँ जी नमस्कार। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का या रेनबो चैनल। रात के 10 बज चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है शाम गज़ल। कहते हैं कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये हम जैसे हो जाएंगे। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर।

कहते हैं कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुम्हें मुमकिन है खराबों में मिलें। और अंजाम वफा ये जिस दिन, ये जिसने भी मोहब्बत की, अंजाम वफा है ये जिसने भी मोहब्बत की, मरने की दुआ जीने की सजा पा गई। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल शाम गजल।

कहते हैं कि वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था। और उल्फत में बराबर है वफा हो कि जफा हो, हर बात में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो। 102.7 MHz आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल शाम गजल।

कहते हैं कि वो कई बार रूठे, हमने कई बार मनाया, हम एक बार रूठे और रिश्ता खत्म। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल शाम में गजल।

वो गुजारी ना सकी हमें से, जो गुजारी ना सकी हमें से, हमने वो जिंदगी गुजारी है। और उम्रे दराज मांग के लाई थी चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतज़ार में। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल शाम गज़ल।

नमस्कार। रात के 10:30 बज चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। प्यार का नगमा है 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल आपने ट्यून किया।

हुआ है। मैं हूं आपके साथ आपका आरजे परविंदर और कार्यक्रम चल रहा है एक प्यार का नगमा है। कहते हैं कि उल्फत में बराबर है वफा हो कि जफा हो, हर बात में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो। और वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्ज़ों का पीछा क्यों करें हम। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

मोहब्बत, अब इन लफ्ज़ों का पीछा क्यों करें हम। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आ गया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आ गया, ना जाने क्यों तेरे नाम पे रोना आ गया। कहते हैं कि इश्क से तबीयत ने जिस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द पे दर्द ए बेदवा पाया। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह पिन चैनल एक प्यार का नगर।

कहते हैं कि उजाले अपनी यादें, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल है। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं एक प्यार का नगमा है। कहते हैं कि वो खुश है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मुवस्सल फूल का है फूल किधर जाएगा। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का है रेनबो चैनल, एक प्यार का नगमा है।

मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा ना दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे ज़िंदगी की बद्दुआ ना दे। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।